0: an early morning there. Now you have commuters preparing themselves for a sudden price rise. Have you been able to speak to any one of them, Akhil, so far?
1: Well, that's right. If you see, this is early morning and right now we have arrived in East Delhi, is a Mayur Vihar area. Behind me, you can see the visual of this petrol pump and it's truly reflecting the early morning scenario. We have just spoken to the petrol pump staff members over here and they are saying that the price has already increased. Achha, mujhe ye bataiye ki petrol aur diesel ka price ka daam kitna badh gaya hai? Petrol pe kitna badha hai, diesel pe kitna badha hai? कब से लागू हुआ है, कितने बजे से? रात 12 बजे से लागू हुआ है. लोग आ रहे हैं, लोगों की यहाँ पे लोग भी है.
2: कल तक ज्यादा लोग आ रहे थे, अभी कम आ रहे हैं. अब देख रहे हो खाली खाली से नजर आ रहा है.
1: अभी सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 7 बज रहे हैं, तभी कम लोग आए ना. आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू स्पीक टू द लोकल्स ओवर हियर. अच्छा, मुझे ये बताइए, इनका दाम बढ़ गया है, पता है आपको? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, 3 रुपए बढ़ गया है, पता है आपको? रात से बढ़ा है जी, नहीं पता है अभी? अच्छा, अभी आपको पॉकेट पे इसका जो असर है वो दिखाई देगा. हे यू सी, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द मीटर ओवर हियर एंड व्हिच इज ट्रूली रिफ्लेक्टिंग द न्यू प्राइस. गौरी, हे यू कैन सी, आई वुड लाइक टू लिटिल बिट ज़ूम एंड शो यू ओवर हियर. हे, दिस इज द न्यू रेट व्हिच इज 97.77 पैसे पर लीटर. दिस इज द न्यू रेट ऑफ द पेट्रोल. सो इट्स अर्ली मॉर्निंग, सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द मोमेंट पीपल विल स्टार्ट रियलाइजिंग दैट द पेट्रोल प्राइसेस हैज इंक्रीज्ड एंड आफ्टर दैट व्हेन दे विल कम आउट दे विल ट्राई टू फिल द टैंक. बिकॉज व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे लास्ट इवनिंग, सम इंडिविजुअल्स बेसिकली गॉट इनटू द पैनिक मोड एंड देयर वाज अ लॉन्ग क्यू व्हिच वाज सीन अक्रॉस द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया एंड द साउथ डिस्ट्रिक्ट एरिया एंड इवन इन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट एरिया ऑफ द नेशनल कैपिटल, वेयर वी हैव सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ क्यूज कैन बी सीन आउटसाइड द पेट्रोल पंप व्हेन पीपल हैव रियलाइज्ड दैट इट्स गोइंग टू इंपैक्ट देयर डेली लाइवलीहुड. बिकॉज यस्टरडे व्हाट वी हैव सीन दैट द इफ यू सी द क्रूड ऑयल प्राइसेस has increased by approximately $3, which was earlier $105.8 per barrel, and right now it has increased to $109.38 per barrel. So it has directly impacted, and due to which what we have seen the rate of the petrol prices
0: it's a very busy petrol pump where you are standing right now. It's still early morning, people are still trickling in, office hours are going to start very shortly. If you can catch hold of someone, why don't you ask them also about the fact that, you know, there's now a great effort being made that people should try and work from home. Delhi government has said 2 days should be work from home. Prime Minister is saying work from home. Do you see anybody who's an office goer who can in fact come in that maybe this is now time to explore all those options that the government is now exhorting us to do?
1: Yeah, that's right. If you see, I would like to speak to some of the हिंदी बात करेंगे आप. अच्छा, ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है लोगों से कि वो जो है कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें. पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया है, कैसा महसूस हो रहा है आप लोगों को? कैसा पॉकेट पे कितना असर पड़ रहा है?
2: इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो हमारे देश के सर पड़ता वो प्रधानमंत्री मोदी जी है, देश के हित के लिए सबसे बेस्ट है और हमें भी उसके लिए उन सब चीजों के लिए योगदान देना चाहिए. और मैंने भी आज 3 दिन में अपनी गाड़ी निकाली, बहुत अच्छे काम है उसके लिए जा रहा हूँ और उसमें मैंने से 500 रुपये का तेल करवाया और
1: अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है नया रूल लागू हुआ है कि मंडे को जो है गाड़ी बाहर कब निकालें. उसके अलावा अगर आप देखें तो और भी अलग अलग दिनों पे जो है लोगों से आह्वान किया गया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. So here you see, I'm going to get more voices on the streets. I'm just joined by one of the vendors over here. अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको पता है कि पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ गया है? आपको नहीं पता है? अभी सुबह सुबह उसके साथ
0: बजे आप जा रहे हैं. He should be shifting to public transport now.
1: He's a taxi driver right now. Let me try to speak to this taxi driver at this very petrol pump. कह रहे हैं कि ये बताइए, आपको पता है पेट्रोल का प्राइस का दाम बढ़ गया है? आप टैक्सी चलाते हैं, कैब चलाते हैं, किस में चलाते हैं? ओला में चलाते हैं, उबर में चलाते हैं, किस पे? तो ये कौन सी, ये लोग आपका प्लेट नंबर प्लेट दिख रहा है, पर्सनल ड्यूटी पे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा अभी घर से निकले हैं, तो अभी तीन सवारी जो है आपके साथ बैठी हुई है, तो कहीं बाहर जाने का प्लान है आउटडोर कीजिए, ये लोकल पे जा रहा है। अच्छा आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ने आह्वान किया है लोगों से कम जो है वो पर्सनल व्हीकल का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। तो अभी लोगों के लिए क्या मैसेज अगर आप देखें तो
0: इशिका, शी इज आल्सो इन फैक्ट एट अनदर पेट्रोल पंप टू गेट अ सेंस ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग, आर दे नाउ गोइंग टू यूज मोर ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आर दे गोइंग टू यू नो लुक एट ऑप्शंस रिलेटेड टू वर्क फ्रॉम होम। इशिका, फर्स्ट ऑफ ऑल, have you been able to speak to anybody, their thoughts on the fact that there's a sudden increase upwards of 3 rupees, a significant increase in petrol, are they now going to shift to public transport as the government's efforts are right now?
3: Well, Gauri, as you rightly said, that there is in fact a hike in petrol prices across the national capital, and we are currently reporting from one such petrol pump. We'd like to show you the visual. It's early in the morning, that's why you'll see that the crowd here is in fact a bit less, but we'll try to go to people here and we'll like to ask them, sir, petrol prices aaj badh gaye hain 3 rupees se zyada, abhi isme aap kaise dekh rahe hain इस हाइक को, और क्या अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा अब जाने के लिए मजबूर
4: हैं? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से तो लग रहा है कि हमारा आगे क्या ही भविष्य होगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी जिस तरीके से वो चलेगी, अपना खाना खर्चा कैसे चलाएगी, वो सब चीज़ें को देखना ही पड़ेगा अपना, क्योंकि आमदनी इतनी है नहीं और खर्चे इस तरीके से जो बढ़ रहे हैं वो ठीक नहीं है।
3: अभी आपने सुबह सुबह पेट्रोल लिया?
4: हाँ लिया था।
3: हाँ तो फिर वो दाम बढ़े हुए?
4: हाँ दाम बढ़े हुए थे उसके, ठीक है।
3: So as you heard, the people here saying that, you know, it certainly has become costlier and that is costing their pockets. So people currently saying that they will be in fact be forced to go towards the public transport. But this is something that has once again come at the middle class is what the people here are saying. Over to you.
0: Has anybody been prepared for it coming after the Prime Minister said that at the end of the day we need to now come down to and ensure that we are undertaking serious austerity measures? Were people expecting this? Because the sense one got was that there is only so much that the government can cushion when it comes to global oil prices, and at some point of time it will have to be passed on to the consumer. Anybody you can speak to who can say they were expecting some of this, they were prepared for this kind of hikes to come in?
3: Well, we'll try, Gauri, to go to some more people here who have come here to take the petrol. And in fact, you know, with that time, you know, my camera person is also showing you the visuals of the petrol pump here. The people have started coming in, and I'll just go and ask them if you know, they were in fact prepared for this. And as you can see that there are cars that have you know, people who have reached here early in the morning, but certainly, you know, some of them are not inclined to speak currently. But yeah, as we told you, the basic here, you know, the basic voice of the people is that it has gotten costlier and that has come on their pockets once again. While they understand that it is because of the global market, but certainly whenever the prices rise, it certainly pinches their pocket. Over to you.
0: Indeed, this pinches your pocket quite significantly. And viewers, if you're tuning in right now, there is a significant increase that has taken place with regard to petrol prices across all major metros in India. In Delhi itself, it's risen by 3 rupees, upwards of 3 rupees. And fresh details coming in is that even CNG prices may have been hiked. Now that, of course, has an impact with regard to public transportation. So what you are seeing is that not just private transport, but even public transport is set to get costlier. This comes up, and I think this is something that is going to lead to a significant across the board increase as far as prices is concerned. Anushka also joining us from another very busy petrol pump in Delhi. She's at the Pragati Maidan petrol pump. And in fact, Anushka, that is a station where you actually have very large amount of CNG refueling that takes place. And with CNG now also going to become costly, that is going to have an impact in terms of public transport, whether it is autos, rickshaws, whether it's taxis, all of them are going to get costlier as well.
5: That's right. We are seeing a sharp rise in the prices of petrol, diesel and CNG. Right now, I'm at Pragati Maidan, which is one of the busiest petrol pump in Delhi NCR. We'll try to show you some visuals also early in the morning. People have, in fact, come here and are standing in a queue to get their pumps filled. But we are seeing that today the residents of Delhi NCR also woke up to higher fuel prices as petrol and diesel rates were increased after remaining unchanged for nearly 4 years. Petrol prices in the capital have gone up by rupees 3.14 per litre and now are selling at rupees 97.77 per litre. Diesel has also become costlier by 3.11 per litre, taking the price to almost rupees 90.67 per litre. Now, this increase has sparked concern among daily commuters, cab drivers and delivery workers who say rising fuel costs will directly affect their monthly expenses. Many commercial drivers describe the hike as an additional burden at a time when earnings have remained under, under pressure. But we are seeing that because of this, a lot of people are facing problems regarding to what, their monthly budgets are. It has taken a sharp, hit in this whole process. We'll also try to speak to few people here who have come here to get their pumps filled. We'll try to speak to some people also. क्या नाम है आपका?
6: प्रकाश वर्मा
5: सर, हम देख रहे हैं आज पेट्रोल डीजल सबके दाम बढ़ गए हैं, कितनी प्रॉब्लम होगी अब मंथली एक्सपेंसेस में?
6: बहुत ज़्यादा होगी, मैं तो कह रहा हूँ 10 रुपये बढ़ना चाहिए रेट, ताकि सारा पॉल्यूशन भी ख़त्म होए, आराम तो रहे। अब ये रेट इतने बढ़े हैं तो बहुत कम है, 10 रुपये बढ़ने चाहिए।
5: आप कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से दाम बढ़ेंगे तो लोग पब्लिक कम्यूट जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें?
6: अब वैसे ही पीछे से माल ही नहीं आ रहा इतना, तो क्या करेगा आदमी, हर एक चीज़ देखनी पड़ती है ना। मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं बस।
5: So we are seeing many of the commuters are saying that this can indeed be a good thing for the national capital given the kind of pollution we see here during the winter season. We'll also try to speak to few more people who are here to in fact get their
0: morning Anushka, today. The fact is, this is not being driven by any environmental concerns. You know, the idea is that numbers are not adding up, economic numbers are not adding up. Environmental side effects are just side effects. As to whether it happens or not remains to be seen. But, you know, as far as one thing is concerned, and that is something that you can, get in some important people there, any of those cab drivers, and then we'll get Akhil also, which is to understand from them that are they going to see any dip in traffic? Because, there is, if people actually start undertaking work from home, Delhi government has put out saying 2 days in a week it has to be work from home, prices have suddenly increased, are they going to see a fall in traffic? And I think that's very important to understand from cab drivers, from commercial vehicles, because if that happens, that has a larger economic effect. Catch hold of somebody. Let me then get in Akhil in the interim.
1: Akhil, well, that's right, Gauri. If you see,
0: more people are coming in.
1: Well, that's right, Gauri. If you see, the queue is getting longer and longer as the morning starts. Right now, I'm joined by one of the office goers over here in the national capital, Mayur Vihar area. अच्छा मुझे बताइए क्या नाम है आपका? चेतन जी, आप कहाँ ऑफिस जा रहे हैं? पेट्रोल का दाम कितना बढ़ गया है? 3 रुपए के आसपास जो है ना, कितना पॉकेट पे असर पड़ेगा हम लोगों के? जो यूएस ईरान का वॉर है वो तकरीबन जो है, अगर आप देखें तो पिछले 2.5 महीने से जो है कहीं ना कहीं पॉकेट पे कंट्रोल था, पेट्रोल का दाम जो है नियंत्रित था। अब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये भी आह्वान किया था लोगों से कि पेट्रोल का दाम जो है वो बढ़ सकता है। अगर आप देखें तो उन्होंने ये आह्वान किया था कि आप कम से कम जो है पर्सनल गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें। क्या कहना है आपका? अच्छा ऑफिस निकल रहे हैं आप, देर हो रहे हैं। अच्छा यू सी ही हैज टू गो टू ऑफिस, सो दैट्स व्हाई दैट इज गेटिंग लेट। अच्छा मुझे बताइए, पेट्रोल और डीजल का दाम जो है तकरीबन 3 रुपए बढ़ गया है, पॉकेट पे एक आम जनता के, एक आम नागरिक के कितना असर पड़ेगा, कितना फर्क पड़ेगा? ज्यादा नहीं पड़ेगा, तो सो पीपल आर रेडी फॉर इट। अच्छा मुझे बताइए कहाँ जा रहे हैं आप, काम पे जा रहे हैं? यहीं तक आए हैं? कह रहे यहां से तो कहीं निकलेंगे, कोई तो मंजिल होगी आपकी, कहीं तो 1-2 किलोमीटर जा रहे हैं। अच्छा पेट्रोल का दाम 3 रुपए बढ़ा है, कितना फर्क पड़ेगा जो मंथली बजट होता है आपका, तो उस पर कितना असर पड़ेगा जी बताइए। हाँ असर पड़ेगा, हाँ। तो दीज आर द कॉमन वॉइसेस विच वी कैन गेट फ्रॉम द ग्राउंड जीरो। आर यू गोइंग टू योर ऑफिस राइट नाउ? कहाँ जा रहे हैं अभी आप इस वक्त? घर जा रहे हैं? अच्छा ओके। So here you see, this is the

0: परिणामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, कितनी परेशानी हो रही है आपको इससे?
1: अभी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में शायद सभी को फेस करनी पड़ेगी परेशानी। नीचे तबके के लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जो बाहर से आके दिल्ली में रह रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी होगी।
0: आपका नाम क्या है सर?
2: अजितेश।
0: अच्छा, क्या आपको पता था ये आने से पहले कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो बढ़ाए गए हैं?
2: वो एक्सपेक्टेड था ये चीज़ें कि प्राइस बढ़ने वाली है, लेकिन एटलीस्ट गवर्नमेंट इन्फॉर्म्ड अस बट नो इन्फॉर्मेशन गिवन प्रायर टू इंक्रीज द प्राइसेस। और मुझे ये भी लगता है कि जो एनईटी वाला जो अभी चल रहा है केसेस, उसका ये डाइवर्जन भी हो सकता है कि दे वांट टू डाइवर्ट द इश्यूज।
0: ट्राई टू स्पीक टू फ्यू मोर यू आर हियर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग। सर आपका नाम क्या है?
3: मेरा नाम रोबी है।
0: देख रहे हैं पेट्रोल डीजल सबके दामों में जो है 3-3 रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है, सीएनजी भी 2 रुपए महंगी हो गई है, कितनी परेशानी हो रही है इसकी वजह से?
3: इसकी वजह से इतना खास परेशानी होने की मतलब नहीं है, 3 रुपये तो बढ़ा है, 8-10 रुपये बढ़ता तो थोड़ा परेशानी होती, 3 रुपये में कोई खास परेशानी नहीं होगी। वैसे महंगाई चल रहा है, युद्ध के बाद जो हालत चल रहा है इस हिसाब से तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ा नहीं।
0: Vishnu, we are seeing that mixed reactions are coming on ground. Many people, while they are saying that this needs to be done, some people are in fact also showing concern that in the longer run, this is indeed going to pinch their pockets with regards to the kind of price increase we are seeing here because of the geopolitical tensions. We have seen the kind of price increase, 3 rupees for petrol, 3 rupees for diesel, while 2 rupees for CNG, which earlier people used to in fact expect that CNG could be cheaper, but now we are seeing a 2 rupee increase in CNG prices. Also, we'll try to show you the board where currently the prices have been mentioned, where the current price of petrol per liter has been shown 97.77 rupees and the price of diesel that has been shown 90.67 per liter is what Delhi prices are in fact right now being seen here across different petrol stations. We are here at the Pragati Maidan petrol pump, which is clearly one of the busiest petrol pump in Delhi, and we are seeing people who are giving mixed reaction to the kind of petrol and diesel price increase that can be seen today. Over to you.
4: Right, let's go across. Thanks, Anushka. We'll come back to you later on. Sujata Dwivedi from Mumbai, Vishwas Sharma from Jaipur, and Akhil also from Delhi. But let me go across to Sujata first. Again, Sujata, basic questions. Give us some of the reactions that you have around you. Gauri, my colleague, joins me as well. Sujata, go ahead.
5: Well, certainly, and the price hike is likely to worsen the condition of commuters as far as the travel cost is concerned, is what they tell us. At present, we are here in Andheri, and like you said, the petrol pump, people though are coming. However, the prices today have changed. Earlier, it was 103 rupees per litre, and today it has gone up sharply by 106 rupees per litre, whereas yesterday it was 103 rupees. And let us speak to commuters and figure out, sir, the prices have increased. Kya bolenge aap petrol?
6: Actually it shouldn't be prices itna high hona nahi chahiye, nahi hona chahiye, because barrel ka rate to itna bada nahi hai, already pehle se price bada ke rakha hai, so the same price mein deliver karna chahiye.
5: Bhaiya aapse jaane, ye petrol bharane aaye hain, petrol ke daam mehenge ho gaye hain?
7: Abhi to main pehli baar aaya, बढ़ गया अभी,
5: बात बताई थी आपको,
7: अभी आया मैं, कल तो कल 103 ही था, आज बढ़ गया हुआ,
5: आज 106 रुपये, यानी 3 रुपये बढ़ गए हैं पेट्रोल के दाम.
7: ये तो बहुत दिक्कत हो गई है.
5: दिक्कत हो गई कैसे?
7: क्योंकि ऑर्डर मार रहे तो दिक्कत होगी ना, पैसा बढ़ गया, डिलीवरी होएगा पैसा बढ़ा ही नहीं.
5: अच्छा, आप डिलीवरी करते हैं?
7: हाँ.
5: अरे तो आपको हर दिन कितना पेट्रोल लग जाता है?
7: लग जाता है 220-230 का,
5: 230 लीटर पेट्रोल लगता है. और अब बढ़ गया तो यानी आपको दिक्कत होगी?
7: हाँ, दिक्कत तो हो रही है ना.
5: There are more people around. Let us speak to them. भाई आपसे जानेंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या बोलेंगे आप? आपको पता है पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं?
8: नहीं नहीं, एक्चुअली
5: नहीं पता. अभी आपको पता चलेगा, 3 रुपये बढ़ गए हैं प्रति लीटर
8: शायद, मुझे पता नहीं, आइडिया
5: आपको नहीं पता है. सो कम्यूट, सो वी नो दैट पीपल आर कमिंग एट पेट्रोल पंप्स, हाउएवर दे आर अनअवेयर बिकॉज इट इज जस्ट हैपेंड वेरी सरप्राइजिंगली फॉर देम एज वेल, एंड दे स्टेट दैट दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट नॉट ओनली द डेली कम्यूटर्स बट ऑल्सो द रिक्शा वालाज इन मुंबई, बिकॉज दे आर यूजली डिपेंडेंट ऑन द CNG विच हैज़ बीन हाइक बाई ₹2 पर kg, बिकॉज ऑफ विच दे से दैट इफ द प्राइसेज ऑफ द CNG आर बीन स्पाइक देन ऑल्सो देयर फेयर रेट्स शुड बी इंक्रीज, एंड एट प्रेजेंट कम्यूटर्स दो आर गेटिंग टू नो अबाउट द सेम, हाउएवर दे से दैट this is going to impact their monthly budget.

0: well. Back to you.
1: All right, let me just get a quick explanation from Gauri on this. Gauri, this was perhaps inevitable. And the longer the war in West Asia stretches, the higher the bigger the impact it was going to be. As I understand it, our oil companies were taking a hit of approximately 1,000 crore rupees a day, right? It is now becoming untenable for them, which is why this is being passed on. Is that right?
2: Said it absolutely correctly. In fact, the overall losses for oil marketing companies right now stand at upwards of 30,000 crore rupees. And if the excise duty cuts hadn't happened, that figure would have been about 63,000 crore rupees plus. So keeping that oil math, which was looking extremely difficult to maintain, there has been a certain amount of oil price rise that has now been passed on to the consumer. The larger question, of course, is that could there be a series of increases? Should we be bracing ourselves for more of this to happen, given the fact that we still do not have the Strait of Hormuz being opened up completely and supply lines remain choked? And I think that's where things stand right now.
1: I'll come back to you in a moment. Vishwas Sharma joins us from Jaipur. Vishwas, simple question. Bring us reactions of people around you.
3: Yeah, well, I'm at a petrol pump, Balaji, petrol pump in Jaipur. And you can see in Jaipur, the price of the petrol hasn't hiked by 3 rupees 25 paise per litre. It's now 108 rupees per litre. And diesel prices has been hiked by 3 rupees 2 paise per litre. Let's get some reactions. Bhaiya, petrol ke daam badh gaye, aapko pata hai? अभी आपको पता चला है करीब 3.25 रुपए जो दाम है वो बढ़े हैं, कैसे असर पड़ेगा आपके?
4: असर तो पड़ ही रहा है, तो बिल्कुल पड़ ही रहा है ना, असर तो पड़ेगा।
3: अच्छा ये बताइए कि क्या अभी उम्मीदें हैं कि आगे जाके दाम कुछ कम होंगे, या अभी इस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन?
4: जैसे मोदी जी ने बताया, तो मोदी जी ने कहा तो वो बचत तो करके खुद का भी फायदा है और देश का भी फायदा है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
3: तो अभी आप समस्या क्या, तो अभी कुछ ऐसी चीजें प्लान कर रहे हैं जिस तरीके से जिससे आप कुछ बचत कर पाए?
4: साइकिल लेने का इरादा है।
3: ठीक है, ओके। सो यू हैव सीन दिस ऑल रिएक्शन दैट यू नो दैट प्राइम मिनिस्टर हैज अपील टू द नेशन दैट यू नो कोस्ट कट इन द इन देयर एक्सपेंसेस। आप भैया पेट्रोल के दाम अभी बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं आज में?
5: आज बढ़ गए, ये मानो एक
3: जी
5: ओके, तो 8 हो गया, 3.25 रुपए उड़ गए।
3: So we have some other people as well on the on here. Let's just get a reaction to them. आप यहाँ डीजल लेने आए हैं, कहाँ से आए हैं?
5: डीजल लेने आए महेश नगर से।
3: महेश नगर से दाम बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के आज 3.25 रुपए के आसपास, कैसे आपके आपके काम पे कैसे असर पड़ेगा?
5: काम पर असर खूब पड़ेगा भैया, खूब पड़ेगा।
3: अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि थोड़ा सा खर्चा कम करें, चीजों को थोड़ा सा सेटल करें, आपको क्या लगता है?
5: प्रधानमंत्री अपील तो कर रहे, पर जनता मान लेता हूँ।
3: आप कुछ ऐसा करने वाले हैं?
5: करने वाले ना, हम कम करेंगे काम।
3: ओके, सो यू हैव सीन ऑल दिस रिएक्शन एंड अर्लियर वी हैव आल्सो
5: काम ना करेंगे खाएंगे क्या
3: जी? तो यू नो विष्णु, वी हैव आल्सो गॉट सम रिएक्शंस अर्लियर फ्रॉम सम गिग वर्कर्स। सो द गिग इकोनॉमी, द पीपल हु हैज यू नो डिपेंडेंसी ऑफ इकोनॉमी ऑन द पेट्रोल डीजल ऑन दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस हैज आल्सो बीन इंपैक्टेड। भैया आप तो ये टैक्सी चलाते हैं, ये पूरा काम करते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े आज, आपके व्यापार पे कैसे असर पड़ेगा? सो यू हैव सीन ऑल दोस रिएक्शंस फ्रॉम ग्राउंड एंड इट इज द फर्स्ट टाइम अमिड दिस ऑल जियोपॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेंशन दैट अ डायरेक्ट इफेक्ट हैज बीन यू नो पास्ड ऑन द कॉमन मैन। ओवर टू यू।
1: All right, thanks. Before I go across to Akhil, Akhil, hold on. I know you want to show us a lot of stuff. I want to go back to Gauri for just a moment. Gauri, I think the point that that we were trying to make over there, Vishwas was trying to make, is that it impacts... let's have Gauri on the screen, please. All right, we've just lost Gauri. I'll come back to her in a moment. But go ahead, Akhil, with what you were saying.
6: Well, Vishnu, if you see right now, I'm in the East District of the National Capital. This is the Mayur Vihar area. Behind me, you can see this is early morning at around... 8 a.m. in the morning, and let me just give you the first voices over here at this petrol pump from the people who are at the receiving end of this. क्या नाम है आपका ये बताइए? संजीव भाई ये बताइए, आम तौर पे जितना भीड़ रोजाना होता है उतनी भीड़ आज है या फिर बढ़ गई है? आज इतनी हमेशा होती है, लोग जो है पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जितने नॉर्मली आते थे उतने ही आ रहे हैं। अच्छा अच्छा मुझे ये बताइए, आप यहाँ पे कम्यूटर हैं, आप भी पेट्रोल बढ़ाने के लिए आए, 3 रुपए जो है वो बढ़ गए, कितना असर पड़ेगा आपके पॉकेट पे?
7: मजदूर के लिए तो काफी पड़ेगा
6: जी,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: has hiked petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. The petrol now will cost about 97.77 per litre in Delhi and 108.74 per litre in Kolkata, 106.68 in Mumbai and 103.67 per litre in Chennai. Those are the prices in the metropolitans. Diesel will now be sold at 90.67 per litre in the national capital, 95.13 per litre in Kolkata, 93.14 per litre in Mumbai and 95.25 per litre in Chennai. As per sources, India is facing a severe global oil shock, but is still shielding citizens instead of passing on the burden to consumers. Sources claim oil marketing companies and the government are together absorbing, like I said, nearly 1,000 crore rupees in losses every day, while petrol under recovery, and this is important to note, stands at 26 rupees per litre and diesel under recovery is close to 82 rupees per litre.
1: Prices across India have gone up sharply, with petrol and diesel prices rising up to rupees 3 per litre, adding additional burden on transport sectors as well as commuters. At present, we are here at a petrol pump, and like you see behind me, people are coming and filling up petrol. Sir, aap se janenge petrol aur diesel ke prices badh gaye hain.
2: Iske bare mein kya batayenge ki ye logo ko government chalani nahi aati, khali khali rate badhane ka bas utna hi kaam hai, har cheez ka woh logo ne rate badhaya.
3: अभी क्या बोलने का, मोदी कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, चलो अभी जान तो बर्बाद कर रही है, आजो
4: अभी आगे चल के क्या होने वाला है पता नहीं चल रहा अभी एक पोजीशन के हिसाब से पेट्रोल अभी भरा के रख रहा
3: हूँ बढ़ने तो अभी क्या पेट्रोल तो भरना पड़ेगा हम लोग को तो लगता ही है डेली का ऐसा कुछ ऐसा इसमें नहीं और बढ़ेगा दाम तो हम लोग को तो
5: सरकार बोलती है कि डीजल कम यूज करे पर जहाँ लगना है वहाँ तो लगना ही लगना है ना हमारे पास में डीजल गाड़ियाँ है तो हम क्या करेंगे इसको बेच के क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ थोड़ी लेंगे और टैक्सी में कहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलेगी
6: साइकिल चलानी पड़ेगी भाई अभी पैदल चलना पड़ेगा क्या करेंगे इतनी महंगाई में हालत खराब है आदमी को एक बार खाने को नहीं हो रहा है गाड़ी कहाँ से चलाएगा
7: पेट्रोल डीजल अपना दैनंदिन जीवन का आधार है उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है तो सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये रेट नीचे कर किया जाए थोड़ा बिलो किया जाए कि आम आदमी को राहत मिल सके इसके कारण बाकी सभी चीजें महंगी होंगी
8: मैं चाहूंगा कि इससे और आगे ना हो इतना पब्लिक के लिए सही है इतना सह सकती है इसके आगे और नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सी चीजें महंगी हुई तो ये भी 2-4 रुपए महंगा तो समझ में आ रहा चलता है
9: there's nothing we can do or say about it live with it
10: so you say there's no option but you just live with it
9: yes just live with it
10: all right
9: there's no point saying anything
10: but do you wish and hope that it does not hike more in the future
9: I think the government should realize that they can't keep hiking everything up Because with the hike in petrol prices, everything else is also going to go up. So the middle class or the people are going to suffer.
11: Right now, I'm in Delhi and traveling in one of the cab over here. And certainly as the CNG prices, the petrol prices have been hiked, it's having an impact on a common person as well. And also on the cab drivers who owns a CNG vehicle. आपका क्या नाम है?
12: Sir, मेरा जीवन है
11: जीवन जी ये बताइए कि आज से जैसे सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं 2 रुपए सीएनजी के दाम दिल्ली के अंदर बढ़ गए हैं कितना असर पड़ने वाला है अब आपके रोज के इनकम पर
12: सर हमें रोज के इनकम में मिनिमम भी 100 से 150 रुपए का मतलब नुकसान हो रहा है क्योंकि 2 रुपए के हमारे गैस में 7 kg 8 kg गैस आ जाती है तो 8 kg में हमें 16 रुपए महंगा पड़ रहा है तो हमें दिन में 3-4 बार सिलेंडर भरना पड़ता है
0: Time to get the word from the ground on this as well. Anushka Garg, our correspondent, is live from Pragati Maidan in New Delhi. Ashish Pandey joins me live from Hyderabad. Sam Daniel joins us live from Chennai. We have Gurpreet joining me live from Chandigarh. Danish Anand is joining us live from Noida. And Pradeep Datta joins me live from Jammu. Let's start with the national capital. Anushka, what's the mood like at the petrol pump today at Pragati Maidan? This is, of course, a very busy fuel station that you're at, is there frustration, is there resignation, or is there acceptance when you speak to the people who are fueling up at the petrol pump there?
13: Well, Vedika, as you have rightly mentioned, this is one of the busiest, petrol station in Delhi NCR. And we have been speaking to people since early in the morning and we have been getting mixed reaction from the people regarding this price hike. We're showing you the numbers here. Currently, we can clearly see the petrol price has risen to 97.77 per litre. And for diesel, we are seeing the price around 90.7 per litre. We'll also try to speak to a few people who are

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
4: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: And it's day two of the high-stakes Beijing summit is now in its final lap before the U.S. president departs the Chinese capital. All right, we have to cut across to a live press conference happening by Minister Dharmendra Pradhan.
1: अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं दो तीन विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को, एनटीए की ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से, 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गेस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है, हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र के अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़े जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधा कृष्णन कमेटी गठन

0: पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधा कृष्ण कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके दो प्रकार की मत आए, हम दोनों प्रकार की मतों को स्वीकार करते हैं। हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने 15 हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं, लगभग आज से एक महीने से थोड़ा एक दो दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर रीनीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत CBI को काम सौंपी है। CBI ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार CBI तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है। राधा कृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है CBI के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके साथ काम करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्ष तो नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहा है। हम इस बार माल प्रैक्टिस होने नहीं देंगे। जो भी दहशतगर्द घूम रहे हैं उनको मैं आपके माध्यम से विषय रखना चाहता हूं, आने वाले एग्जामिनेशन पे उसे निवृत्त रहे, नहीं तो उनको दंड भुगतना पड़ेगा। और मैं समाज को अपील करना चाहता हूँ, विशेष करके सभी विद्यार्थियों का, कोई निर्भय होकर परीक्षा में, आप ही सरकार आप ही के साथ है, आप ही के हितों में, मेरिटियस स्टूडेंट्स की, मेधावी छात्रों की पक्ष में निर्णय लिया गया है। मैं फिर कहूँ, हम नहीं चाहते थे कोई माफिया की षड्यंत्र से कोई मनी बैग आपकी सीट को छीन ले, हम नहीं होना देना चाहते थे। इसीलिए हमने एक कठोर, हमको बहुत एक अभिभावक के नाते, एक दायित्व में रहने वाले अधिकारियों के नाते और हमें मंत्री के नाते, हम सब उसमें से बहुत, जो घटना हो रही है उसमें से बहुत दुखी और चिंतित हैं। लेकिन हमें बड़े लक्ष्य को लेकर देश के हितों में हमें कठोर निर्णय लेना पड़ा है। हमको छात्रों पर भरोसा सर्वोपरि है। मैं फिर दो तीन जो सुधार अभी इस बीच में NTA की पास और मिनिस्ट्री के पास और मेरे जैसे व्यवस्था तक अनेक सुझाव आए हैं, अनेक सुधार की सुझाव हैं। और सुधार मैं मानता हूँ एक कंटिन्यूस विषय है, सुधार कोई अल्टीमेट नहीं होती है। सुधार जो हम ओपन माइंड में NTA उस विषय में, अभी तो NTA बहुत योग्य व्यक्ति के हाथ में है, हमारे सचिव की बहुत अनुभव भी उस विषय में है। मैं मानता हूँ हमें NTA को सुप्रीम कोर्ट की आदेश कारण NTA बनी है। NTA हर एक साल 1 करोड़ बच्चों की एग्जामिनेशन कराती है अमूमन। NTA और निर्भुल हो, NTA में जीरो एरर हो, जीरो यानी जीरो एरर हो, ये हमारी दायित्व है और बाहर भारत की व्यवस्था उसको करके रहेगी। इसलिए हम ओपन माइंड पे इस परीक्षा को भी जा रहे हैं। मैंने जैसे दो तीन पहला ही नोटिफिक, जिस दिन परीक्षा कैंसिल के दिन NTA ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें NTA वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको एक फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर से छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था, अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से, इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे। और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा, इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में, इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधा कृष्ण कमिटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं, इसकी सुधारने की जिम्मेवारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सभी से सोशल इविल है, इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है, आप लोग कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूँ, देशवासियों का सहयोग चाहता हूँ, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूँ, राज्य सरकारों का सहयोग चाहता हूँ, देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था।
1: सर जो पैदल
0: सबका मैं लूंगा एक एक करके, इनसे अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ, आप अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा, पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था लेकिन इस बार बीजेपी, ये मैंने कहा ना, इसकी राधा कृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है ओएमआर, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी।
1: सर एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है।

0: सुधारने की जरूरत है अभी?
1: हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है, उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है, इसको सुधार किया ही जाएगा।
0: सर, सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है, जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य?
1: सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा।
2: सर, मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा, ये एकदम आप
1: तुलनात्मक ओएमआर से सीबीटी थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्टेड है, थोड़ा उसको ठीक किया जाए। टेक्नोलॉजी देखो, साइबर क्राइम तो एक बड़ा दुनिया बन चुकी है ना, इसको हम लोग सब नई दुनिया में रह रहे हैं, वो भी वहाँ भी चुनौती है, लेकिन हमारे देश की सिस्टम पे हमें भरोसा करना पड़ेगा और तुलना, ये तो इम्प्रूवमेंट की चीज़ है।
3: चार बार अभी तक देखा गया है कि पेपर लीक हुआ है, हर बार आपने ये बात कही है कि जीरो टॉलरेंस रखा जाएगा, लेकिन बार बार ये चुप हो जाती है, आखिर में कहाँ थी?
1: नहीं, हर एक बार की नेचर बदल जाती है ना। देखो, ये हम सब एक सिस्टम चलाते हैं, सरकार बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं हम चीज़ों को सुधारेंगे, फिर भी एक्सीडेंट होता है, उसको ठीक करना पड़ेगा।
4: सर, एनटीए के स्ट्रक्चर में किस तरह का रिफॉर्म आप सजेस्ट कर रहे हैं, और जैसे परमानेंट एम्प्लॉइज नहीं है एनटीए में, कॉन्ट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं कि उससे लीक का चांसेस बढ़ जाते हैं?
1: मैंने कहा कि पहले सीबीआई को अपने काम को पूरा करने दो, इसके अलावा एनटीए को और मजबूत किया जाएगा।
5: सर, जिस तरीके से आपका एनटीए को मजबूत किया जाएगा, लेकिन साल दर साल पेपर लीक होता है, तो क्या एनटीए जिम्मेदारी लेगा कि इस तरीके से गलती ना हो?
1: तो एनटीए ने दायित्व तो लिया है, ये सूचना एनटीए को ही आया है, 7 को एनटीए की ग्रीवेंस पोर्टल में आया है, एनटीए ने उसको छुपाया नहीं, एनटीए ने उसको संवेदनशीलता के साथ सरकार के सामने रखी, हमने हमारे नेतृत्व के सामने रखा, बाकी सिस्टम के सामने रखा, एजेंसियां तुरंत काम पे 8 तारीख सुबह से 7 तारीख रात को एजेंसियां काम शुरू कर दी है, 12 को हमने निर्णय कर लिया कैंसिल करने का, 15 को हमने निर्णय कर लिया परीक्षा करने का, सब एनटीए ने ही किया। एनटीए अकाउंटेबल है, एनटीए में जो कमियां उसको सुधारना पड़ेगा, जो भी गुनहगार है उसको परिधि में लाना पड़ेगा, और एनटीए ही अकाउंटेबल होगा।
6: सर, पेपर लीक के आरोपियों ने कहा है कि पिछले साल भी पेपर आउट था।
1: कम से कम अफवाह में हम ना जाए, कोई विषय में हम अफवाह में ना जाए, हम सब जिम्मेवार, आप सब राष्ट्रीय मीडिया हो, आप सबकी दायित्व है, समाज में जो है हम कुछ भी चीज़ हम छुपा नहीं रहे, कुछ भी चीज़ हम मुंह फेर नहीं रहे, लेकिन जो विषय है ना, असम 20-25 लाख बच्चों के भविष्य की सवाल है, आपकी एक एक वाणी अनेकों के मन में उद्वेग खड़ा करता है, जो तथ्य है वो छुपना नहीं चाहिए, आपकी सहयोग में आपके सहयोग से हम यहाँ आए हैं, ये मीडिया ने यहाँ तक इसको लाया है, हम उसको आदर करते हैं, लेकिन हम ऐसा भी कुछ विषय ना करें जो अनावश्यक फिर एक बार तनाव खड़ा करे, प्रमाण है तो उसको चिंता करें। जो जो जो मेरे में कोऑपरेशन चाहूंगा, जो मित्र पूछ चुके हैं वो छोड़ दीजिए, जो नहीं पूछे वो पूछे। सुधारा जाएगा, नहीं कई चीज ध्यान में आया है, कई चीज आई अश्योर यू विल गो टू द लास्ट पॉइंट। देखो, राज्य इस बार भी मैं आभार पकड़ के, इस बार जो हमने कहा ना, मैंने राधाकृष्ण कमेटी को कोट किया, राधाकृष्ण कमेटी ने कुछ मौलिक सुझाव दिया था कैसे इसको इलेक्शन मैंने कैसे कंडक्ट किया जाए, उन्होंने शब्द लगाया था इलेक्शन टाइप के अरेंजमेंट करो, जनरल इलेक्शन जैसे होती है ऐसे इस बार अरेंजमेंट करो। आप राज्य देश की किसी भी जिला कलेक्टर एसपी को आप इस बार पूछिए फोन करके, उन्होंने क्या किया, मैंने कम से कम उस दिन 3 तारीख को कम से कम 15 देश की सभी कोनों में, जम्मू का श्रीनगर से लेके केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेके सेंट्रल इंडिया तक में अनेक कलेक्टर

0: रेसिपी को हिमाचल से भी रैंडम फोन किया है उसी समय में, कहाँ हो, सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, सब एग्जामिनेशन सेंटर, सब एसपी कलेक्टर सब एग्जामिनेशन सेंटर में थे, अलग कोई गेट के सामने है कोई कैंपस के अंदर है। राज्य सरकारों ने सभी जगह पे बहुत ही मदद किया, फिर उनके हम मदद लेंगे, राज्य सरकारों की मदद के कारण ये हो पाई है। 5400 सेंटर में इस बार तो ये निगरानी की व्यवस्था की गई थी, हर एक विद्यार्थियों को हम एआई टूल यूज करके उनको आप भी देख पा रहे थे, आप लोग उस दिन जो कोई गए होंगे मॉनिटरिंग सेंटर में आप भी देख पा रहे थे, लेकिन फिर भी चूक हुई है। आप कुछ बच्चे आपकी मदद चाहिए, हम मिलकर आश्वर करें कि नहीं होगी।
1: सर राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि सरकार पर जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं उनका भरोसा टूट गया है, उस भरोसों को कैसे लाया जाएगा, कैसे विश्वास दिलाया जाएगा कि आगे से ऐसी चीजें ना हो।
0: ठीक है, मैं फिर विनम्रता को मैं उसके कोई राजनीतिक आरोप का उत्तर आज नहीं दूंगा, ये मंच नहीं है। मेरे दायित्व मेरे 22-25 लाख बच्चों की भविष्य, उनके अभिभावक, उनके मन की आवेग और संवेदना, मैं भी आपको थोड़ा विनिवेदन करता हूँ। अभी आज के दिन बच्चों को हम एक फिर एक पुनः व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों को कोई भी हम कन्फ्यूजन में ना रखें, मैं कोई राजनीतिक उत्तर नहीं दूंगा। आपका पूछ चुके हैं,
2: आप पूछ चुके हैं। से रिलेटेड एक सवाल ये है कि उन्होंने हाइब्रिड मॉडल सजेस्ट किया था जिसमें आप ईमेल कर दो सेंटर पे प्रिंट आउट हो जाए, बट वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाया और क्या क्या मल्टी मॉडल शिफ्ट मॉडल रिकमेंड हुए थे, वो कब इम्प्लीमेंट हुए या वो हो चुके थे?
0: मैंने फिर कहूँ राधाकृष्णन कमेटी की लगभग सारे रिकमेंडेशन हमने पालन किया है, जो 5400 सेंटर की इस बार की परीक्षा के अरेंजमेंट, परीक्षा के अरेंजमेंट देखिए इसको आज कोई एक अखबार ने शायद इंडियन एक्सप्रेस ने उसकी पूरा चेन को समझाया है, क्वेश्चन सेटिंग से लेके प्रिंटिंग ट्रांसपोर्टेशन बैंकों में स्टोर रहना परीक्षा सेंटर पे जाना परीक्षा सेंटर से फिर पोस्ट के माध्यम से एनटीए को लौटना, ये पूरा कमांड चेन है। राधाकृष्णन कमेटी ने जो रिकमेंड किया उसमें से लगभग हमारी दृष्टिता में 100% पालन किया है, उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों विषय कहा था, जिसे मैंने भी कहा, मैंने प्रो सो मोटो भी कहा कि हमने अगले बार से सीबीटी में काम करेंगे, ये भी राधा कार्यान्वयन कमेटी की रिपोर्ट था, हमने लागू नहीं कर पाया था, करेंगे अगले बार।
3: सर, आपने एग्जाम से पहले 80 टेलीग्राम चैनल को ब्लॉक किया था, लेकिन ये जो अभी जो जांच निकली है उसमें ये पता लगा है कि टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हर जगह पे यूट्यूब पे ये चल रहा था कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपकी डार्कनेट की टीम क्या कर रही थी, जबकि होम मिनिस्ट्री की टीम का यही काम था कि परीक्षा में ये सब चीज़ों की नज़र रखे, तो क्या ये बड़ी चूक नहीं है?
0: देखिए मैंने आपके आप आए नहीं थे, मैंने एक विषय कहा कि साइबर चैलेंज बढ़ रहा है, 120 आपके पास 80 नहीं 120 टेलीग्राम चैनल काम कर रहे थे, हमने सबको निरस्त किया था, ये व्हाट्सएप में भी आया, हमें नई समय की चुनौतियों को आगे जाना पड़ेगा, साइबर क्राइम हमारी एक चुनौती बन चुकी है, हम उसको फिर कोशिश करेंगे इसमें से उसको रिंग फेंसिंग करें।
4: सर, एनटीए से ही पेपर लीक हो गया, ऐसी कुछ खबरें चल रही हैं।
0: सीबीआई को करने दो, मैं उसको सीबीआई हमारा बहुत विश्वसनीय एजेंसी उसमें वो लगा है, निश्चित रूप में उसको तह तक जाएगा। देखिए मैं इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है, एक अभिभावक के नाते एक नागरिक के नाते इस बच्चे की दुर्मूल्य और अमूल्य जिंदगी के लिए जो नुकसान हुई है मैं मेरे पास कोई शब्द ही नहीं, हम सबकी दायित्व बनती है, मेरे भी दायित्व बनती है ये विषय कैसे पुनरावृत्ति न हो इसकी चिंता कर रही
5: है।
0: वो सुबह होगी, योगा डे सुबह होगी, हमें सोच के तय किया है।
6: सर ऐसा देखा जा रहा है सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो है वो छात्रों पर ही लागू होता है, मंगलसूत्र उतरवा दिया जाता है, कई जेब वाली पैंट उतरवा दी जाती है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस से ही पेपर लीक हो जाता है, तो ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है वो सिस्टम पे लागू होना चाहिए छात्रों से ज्यादा, क्योंकि हर बार परीक्षा केंद्र पर विवाद आता है कि मंगलसूत्र उतरवा दिया गया है, अंगूठी उतरवा दी गई है, लेकिन पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहा है।
0: देखिए हमने इस दो अलग अलग विषय है, छात्र कैसे सहज बिना तनाव के परीक्षा दे, मैंने कहा कि इसकी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की विषय है, जो छात्रों की सिक्योरिटी दृष्टि से जो मिनिमम करना चाहिए वो करना पड़ेगा शायद, लेकिन वो हरास ना हो उसकी चिंता करना पड़ेगा, बाकी रहा इसकी जो कमांड चेन को तोड़ने वाले को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसकी दायित्व हमने लिया है, उसको स्वीकार किया, सीबीआई काम पे लगे, थोड़ा उसको पूरा करने दीजिए।
5: सर देयर आर इंफॉर्मेशन, इनफैक्ट वी हैव इनपुट्स कमिंग इन, लोगों ने एक एक महीने पहले तक लोगों एनटीए को ईमेल्स लिखे हैं एंड वी हैव प्रूफ्स, देयर आर मल्टीपल पीपल। अगर नॉर्मल लोगों को ये पता चल चुका है कि पेपर लीक हो सकता है एंड दे हैव रिटन दीस ईमेल्स टू एनटीए, तो एनटीए के लिए हाउ डिफिकल्ट वाज इट?
0: नहीं, एनटीए के पास जब ही खबर है एनटीए ने कार्रवाई किया। अभी देखो इसका मैं कोई तथ्य के ऊपर आज काम बात करना पड़ेगा, जब तक मैं तो अस्वीकार नहीं कर रहा हूँ। 7 को एनटीए को खबर आया, हम 7 रात को तीनों के बीच में बातचीत हुई, हमने काम किया है, तथ्य के साथ बात करेंगे।
7: सर देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज विद इन एनटीए व्हिच वाज रेड फ्लैग बाय द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इन दिसंबर 2025 इटसेल्फ। 6 मंथ्स लेटर वी आर स्टैंडिंग इन द सेम सिचुएशन। एनटीए के 14 में से 5 पेपर्स में इरेगुलरिटीज या गड़बड़ियों की बात पार्लियामेंट कमेटी ने खुद कहा था।
0: देखिए, मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के मत पे नहीं जाऊंगा, मैं राधा कृष्ण कमेटी के मत पे जाऊंगा, आपकी मत पे जाऊंगा, फैक्ट पे जाऊंगा, असम्पशन पे नहीं बात करेंगे। पॉलिटिकल टोन पे कम से कम आज तो मैं करूंगा, सारे का उत्तर मैं पार्लियामेंट भी दूंगा, भी सब एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हमने दिया है। हमने और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की विशेष करके जब प्रतिपक्ष के व्यक्ति बैठ जाते हैं कैसे लिखते हैं, फिर आप मेरे से आप भी ज़्यादा जानते हो, मैं आज कोई पॉलिटिकल उत्तर, आज वो माहौल नहीं है, मैं उसको नहीं देना चाहूंगा।
6: बड़ी संख्या में जो छात्र हैं उनका ये डिमांड है कि एनटीए को बदला जाए, एनटीए के जगह किसी और एजेंसी को जो है वो लाया जाए, क्योंकि बार बार एनटीए जो है वो मिसकंडक्ट कर देती है।
0: देखो, कोई ना कोई एजेंसी, मैंने कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब की एक इंटरव्यू देख रहा था, कोई ना कोई एजेंसी तो करेगा ना। देश में अनेक जगह पे स्टेटों में भी ब्रीच हो रहा है, कोई एजेंसी वहां भी काम कर रहा है। पिछले दिनों में भारत सरकार ने एक पब्लिक एग्जामिनेशन की कंडक्ट एक्ट लाया, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी, व्हीकल नहीं, व्यवस्था को सुधारनी पड़ेगी। एनटीए कोई सरकार के निर्णय नहीं था, कुछ विसंगति को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक सेंट्रलाइज एजेंसी बना, उसमें से बनी है। एनटीए ने हर एक साल 1-1 करोड़ का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, फिर भी गड़बड़ी हो रही है, उसके दायित्व हम लेते हैं। व्हीकल का इश्यू नहीं है, इशू है प्रोसेस की, चैलेंज की। सोसाइट मैंने कहा ना, ये जो अभी मैंने आज होम सेक्रेटरी सामान्य गृह मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी साहब को निर्देश दिया है कि हर एक जिले में इस सर्विलांस व्यवस्था को, हमको पता है कौन सी जिले में कौन सी दलाल घूम रहे हैं, ये सामाजिक व्याधि है। लाखों करोड़ रुपया खर्चा करके व्यवस्था को तोड़ने की, ये कोई व्हीकल की इशू नहीं है, ये व्यवस्था की, ये कोई एक व्याधि है। आपकी मदद में चाहता हूँ उस व्याधि को रोकने की।
2: सर, एनटीए कह रहा था कि ऑनलाइन परीक्षा के लिए 22 लाख बच्चों की परीक्षा के लिए वो कैपेबल अभी नहीं है, आपको लगता है नेक्स्ट टर्म तक हो जाएंगे?
0: चलो, अभी तो मैंने कहा बाबू, साल भर
8: का एक सवाल ये है कि क्या सर, एक सवाल ये चाहिए, क्या नीट 2025 भी संदेह के घेरे में था कि
0: नहीं
8: सर, इसलिए सवाल ये पूछा मैंने।
0: देखो, मैं असम्पशन पे कोई उत्तर नहीं दूंगा, एजेंसियां काम कर रही है उनको करने दो।
9: सर एक सवाल क्योंकि एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है और लाखों बच्चों के भविष्य से, क्या आपको लगता है कि कानून व्यवस्था और भी सख्त करने की जरूरत है, जैसे कि जो भी अपराधी हों इसमें संलिप्त हों उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, चाहे वो सरकार के अंदर हो, सिस्टम के अंदर हो या बाहर के लोग?
0: कोई भी हो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो सामाजिक व्याधि एक भयंकर कैंसरस रूप ले लिया।
10: सर, अब कंप्यूटर बेस्ड हो गई है तो क्या
0: हुआ नहीं हुआ हुआ नहीं
10: मतलब अगले साल से होगी, तो क्या यही देख सकते हैं कि शायद ऑफलाइन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी ग्राउंड पे या किस तरीके से? क्योंकि
0: देखिए, सारे विषय को मैंने आज के परिप्रेक्ष्य में आपकी मदद मांगा, आप उसमें मदद करिए, धन्यवाद।
11: Union Education Minister there, Dharmendra Pradhan, addressing the media, answering questions as well over the paper leak scandal that has taken place after NEET had to cancel the exam that took place on the 3rd of May. And again, 22 lakh students have been affected. I say again because this happened in 2024 as well. Now, Dharmendra Pradhan announcing that perhaps next year the exam will go online. He asked for the media's understanding. He said that we are trying to get to the bottom of how this paper leak took took place despite all the steps that we took last time around, admitting that there needs to be some reform in the NTA, the National Testing Agency, as well, hitting out at the exam mafia and promising that such paper leaks will be prevented from the next time around. Though, as I said, this did happen in 2024 as well. It's been a huge stress point for, of course, 22 lakh students across the country who took this exam for enrollment into the undergraduate medical courses. Well, let's go across now to Tanushka, who was there at the press conference. And Tanushka, take us through the highlights of what Dharmendra Pradhan said. He did not, get into the, when questions were asked about whether the leak was from the NTA, which is something we've reported as well, that is apparently being said now. But tell us about what he said in terms of, reforms and what and how next time it's going to be online.
12: Gargi, so what's important to note first off is that the NEET examination is to shift to the computer-based mode from next year on. This is something which the education minister made it very clear, and he said that this time the re-examination that is going to take place on the 21st of June will happen from 2 p.m. in the afternoon until 5:15 in the evening. So this is the exam time. Usually there is, the exam finishes at 5 o'clock sharp, but a 15-minute grace period has been given. And the formalities also with respect to the admit cards, are to reach all the students by 14 June. We know that the next examination, that is the re-NEET that is going to take place, will have zero fees. Students, will be also refunded the current fee that they have already paid. And the NTA has also decided that 1 week time prior will be given to the students to decide their examination center, that is which city do they want to give exams from. What is also important to note is that the education minister has come out quite transparently and has said that there is a zero tolerance policy and that it is on their part that the improvement comes upon. He admits that there is improvement needed in the entire system and to identify where this breach exactly happened from. So this is very crucial coming in from the union education minister saying that improvements are needed within the National Testing Agency as well. He ensured that an entire overhaul will also be done to strengthen the NTA. And, the move from an OMR-based sheet to a CBT mode is also more foolproof, is what the education minister also said. He said that the government takes full responsibility and that they will improve. And even then, when there are such incidents, remember that the Radhakrishnan Committee was formed after 2024. Paper leaks had happened in the NEET examination itself. He said that despite the Radhakrishnan Committee's recommendations, there were 95 recommendations made, and these recommendations being implemented, there still happened such a breach. So it will not be taken lightly, and the investigation and the agencies will take serious action into anti-social elements and such social evils, is what he calls, into this paper leak malpractice. Back to you.
11: That's right. And questions were also asked about the CBI probe that is taking place, given that this entire web is across several states. The minister didn't really say too much on that, did he?
12: Precisely, Gargi. He, left on the investigation portion to the Central Bureau of Investigation itself. He said, and he mentioned that this is something that the agencies, the central agencies, are looking into, and that they, on their part, are ensuring that exams and the re-exam happens in a free and fair manner. And he said that the Education Ministry is keeping an open mind at this point. The transport facilities will also be provided to students who are coming in from, city areas or going into remote areas to give in the exams at the exam centers. Weather conditions will also be taken into mind. And he's also, however, said that the CBI is right, and whatever the CBI, decides upon in its investigation will be, the last word in terms of the investigation, and that no one will be spared, whoever has caused this sort of, mistrust in the system.
11: Right, Tanushka, also it's been a huge embarrassment for the government, as we mentioned, and he too, and I heard the media also asking about how last time in 2024 similar promises were made and how, things would be improved. So it's been a huge embarrassment. The opposition has been extremely critical of the government over this. Dharmendra Pradhan also talking about this exam mafia, that works for ensuring in the sense making these paper leaks and selling papers, and he hit out at that exam mafia.
12: Honestly, Gargi, that's very important to note that the education minister himself is calling these anti-social elements as the exam mafia. And he said that, of course, there is, you know, a lot of backlash, a lot of opposition, not just in terms of politics, but also from students. Remember that nearly 23 lakh students appeared for this examination for only 1 lakh NDTSC. That is a lot, and the sort of trust to be reinstated in the students is very important at this point. Back to you.
11: All right, Tanushka, thanks so much for joining us. With all those details, Dharmendra Pradhan, they're addressing the media over the paper leak scandal. The re-examination will be on the 21st of June, talking about several points in which will be taken to improve the sanctity of these exams. With that, we'll sip into a short break. More news on the other side. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं दो तीन विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए की ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गेस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है, हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र के अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधा कृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधा कृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए, हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं, हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं, लगभग आज से 1 महीने से थोड़ा 1-2 दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस, ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को रखा जाता है, गुमराह करने की फिर कोशिश किया जाता है, फिर री नीट की हम लोग एग्जामिनेशन तोड़ सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था को खुली चुनौती दिया जा रहा है। ये सारे को ध्यान रखते सरकार ने तुरंत सीबीआई को काम सौंपी है, सीबीआई ने त्वरित कार्रवाई शुरू किया है। इस बार सीबीआई तह तक जाएगी, कहाँ वो कमांड चेन पे ब्रीच हुई है, राधाकृष्णन कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी कहाँ वो ब्रीच हुई है, उस ब्रीच को मेरा पूरा विश्वास है सीबीआई के ऊपर और जो संबंधित एजेंसी उनके करे, सरकार की पूरी माइटी, सरकार की पूरा नेतृत्व, सभी विभाग उसमें से गंभीरता चीज को लेते हुए शीर्षत्व नेतृत्व उसके लिए खूब दायित्व लिया है, चिंता कर रहे हैं हम।
2: Welcome back. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a five-nation tour with a key stop in the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को एनटीए के ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा प्योर मसाला।
5: Where the software engineer meets the cool UI UX designer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूं। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को एनटीए की ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई। गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से, 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है, हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र के अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं दो तीन विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को एनटीए के ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से, 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गेस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है, हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें, जो हमने राधा कृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधा कृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला, हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए, हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं, हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाज।
2: Welcome back. Now, days after Prime Minister Narendra Modi's call to reduce petrol and diesel consumption, saying use public transport, reduce your car use and do work from home, now the centre has hiked the price of petrol and diesel by 3 rupees per litre. The opposition has slammed the centre over the fuel price hike, saying the hike is timed with the polls and the price rise only after polls are over. The BJP, however, hit back, saying the public has been shielded from the price hike. According to sources, India is facing a severe global oil shock but is still shielding citizens instead of passing on the full burden to consumers. Since the Iran war disrupted the Strait of Hormuz, the world's most critical oil route, fuel prices have surged across countries. Our reporters were out this morning speaking to people at various petrol pumps. Let's listen in to what people had to say.
3: The government's message amid the global oil crisis is becoming increasingly clear. It does not want consumer to bear the full burden of rising crude prices through steep fuel price hike, and that is quite reflected in today's move. And according to top government sources, oil marketing companies along with the centre are currently absorbing losses of nearly 1,000 crore every day to keep petrol and diesel prices stable despite the surge in global crude prices. Now, under recoveries are estimated around 26 per litre on petrol and nearly 82 per litre on diesel. Officials argue that the alternative would be far more painful. Since fuel demand in India remains largely price inelastic, consumer would need petrol and diesel even if price rises sharply. Internal estimates suggest that the fully passing on the global shock could require fuel price hike of as much as 200 to 300%, and that's huge. Now, sources says that government believe that any knee-jerk move would hurt the bottom of the pyramid the most. Instead, the focus is on reducing fuel consumption volume rather than sharply increasing the prices.
4: Delhi residents have woken up to the price rise of fuel today. We are showing you the visuals from Pragati Maidan petrol station, which is considered to be one of the busiest petrol stations in Delhi. We are showing you the visuals of the current petrol prices in the capital that have gone up by rupees 3.14 per litre and are now selling at rupees 97.77 per litre. Diesel has become costlier by rupees 3.11 per litre, taking the price to rupees 90.67 per litre. Now, after remaining unchanged for nearly 4 years, this price rise can be seen today that has sparked concern among daily commuters, cab drivers and daily workers who are saying rising fuel costs will directly affect their monthly expenses.
5: नहीं, अभी तो मैं जब आया तो अभी मैंने देखा कि शायद कुछ हो रहा है, फिर देखा कि अच्छा ये प्राइस बढ़ गया है, तो रात तक तो पता नहीं था, अभी अभी पता लग रहा है कि अच्छा ये
6: प्रभाव पड़ेगा इस पे। हमें आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगा जो ड्यूटी कर रहे हैं।
7: सरकार बोलती है कि डीजल कम यूज करें, पर जहां लगना है वहां तो लगना ही ना। हमारे पास में डीजल गाड़ियां है तो हम क्या करेंगे, इसको बेच के क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी लेंगे, और टैक्सी में कहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी।
8: साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है। आदमी को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा।
9: पेट्रोल डीजल अपना दैनंदिन जीवन का आधार है, उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये रेट नीचे कर किया जाए, थोड़ा बिलो किया जाए कि आम आदमी को राहत मिल सके। इसके कारण बाकी सभी चीजें महंगी होंगी।
10: मैं चाहूंगा कि इससे और आगे ना हो, इतना पब्लिक के लिए सही है, इतना सह सकती है, इसके आगे और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें महंगी हुई तो ये भी 2-4 रुपए महंगा तो समझ में आ रहा चलता है।
11: Nothing we can do or say about it. Live with it.
12: So you say there's no option, but you just live with it.
11: Yes, just live with it.
12: All right.
11: No point in saying anything.
12: But do you wish and hope that it does not hike more in the future?
11: I think the government should realize that they can't keep hiking everything up. Because with the hike in petrol prices, everything else is also going to go up. So the middle class or the people are going to suffer.
2: Let's now listen into what Petroleum Minister Hardeep Puri had said yesterday when he highlighted the losses that oil companies have been facing.
13: If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what? 1,000 crores every day. That the under recovery is going to be what? 198,000 crores? 2 lakh crores nearly? The losses are what? 1 lakh crore, if you look at the quarter. In that context, how long can you keep it like this? Where is the oil? It used to be at around $64 or $65.

0: income, having to spend more directly on fuel and indirectly on other items for fuel or dependent on fuel. The shock is coming. We had old inventory. We had the ability for oil companies to be the shock absorber. And it's a large amount of money. Therefore, I don't think you're very far away from the shock.
1: Well, let's now take a look at the political showdown that's erupted over the fuel price hike. Opposition has launched a sharp attack on the center. Rahul Gandhi slammed the government for fuel prices hike and said that people are paying the price of the government's mistake. Not just the Congress, all opposition leaders are questioning the timing of the hike, alleging that the government deliberately waited for election results before increasing petrol and diesel prices. Meanwhile, the BJP's hit back at the opposition, calling them an opportunist. A BJP said that the rise is due to global oil crisis and hike in India is very minimal in comparison with other countries. Let's listen in to what has been said.
2: We are discussing the impact of the increase in the petroleum products, price of the petroleum products are discussing, and we are assessing the impact on the public. Then we will check, then we will take a decision. What's on that.
3: Mr. Modi has failed in the international relationship. He could not manage well, he could not help. That is why, like COVID, what he said, ring the bell, lift the lamp and all, he's just giving. It is not possible. How to consume oil in my house? How can I stop it? How can I stop vehicle? You ask all the central minister, today he may reduce his security with two vehicles. Okay, fine. Let all others do in the entire country. No one should travel outside. How can it be there?
4: Mr. Modi is saying that everything is fine. Is this the Achhe Din that they promised? And why is the government not telling people the problem? The Prime Minister should come out in the open, speak to public, speak in Parliament on the real situation of the crisis that we are going to face.
5: डीजल 90 पार, पेट्रोल 100 पार, ये जनता को लूटा गया. वजह है कि उस समय अंधभक्त पैदा नहीं हुए थे. याद है कि दिल्ली में 1998 में केवल प्याज के दाम बढ़ गए थे. सुषमा स्वराज की सरकार की सफाया हो गया था. अब अंधभक्त पैदा हो गए हैं. कल दूध के दाम बढ़े, आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े. इसके पहले LPG गैस, कमर्शियल LPG सिलेंडर का बढ़ गया था.
6: सिर्फ 2-3 रुपये पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण खाद्य पदार्थों में भी बढ़ोतरी होगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ोतरी होगी. मतलब अब महंगाई पूर्ण रूपे चरम पे आ जाएगी. जनता को विदेश दौरा से रोक करके खुद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल पड़े.
7: सीधा सवाल है मोदी सरकार से. पिछले 10 सालों में, 12 सालों में, जब कच्चे तेल की कीमत कम थी और कोई युद्ध नहीं चल रहा था, तो 16 बार एक्साइज टैक्स बढ़ाया गया. 65 रुपए से 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल के प्राइस चले गए. उस समय जब आपने फायदा नहीं दिया, तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप लोगों के ऊपर इतना भार क्यों डाल रहे हो? क्यों उनके पेट पर लात मार रहे हो? और आम लोगों से पूछना चाहता हूं, बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को जिताया, उसके बाद मिला क्या? 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए. उस समय तो बड़े जोर जोर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलते थे कि बड़े हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई कमी नहीं है, कोई दाम बढ़ेंगे नहीं. इससे पता लगता है कि इनकी दोहरी राजनीति है.
8: तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था. दूसरा, 2014 से क्या वॉर सिचुएशन चल रहा है? 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को. 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है?
9: जाहिर सी बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार महंगाई बढ़ रही, लगातार लोगों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है. और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कदम भी नहीं उठा रही. आज की तारीख में लगातार जो है लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ता जा रहा है. लोगों को चलना, निकलना, खाना पीना हर चीज़ जो दुश्वार हो गया है. और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, महंगाई इसी तरीके से चरम सीमा पर बढ़ती रहेगी.
10: But if the government had to wait for the election results, it's been more than 10 days since the

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। 21 जून को री एग्जामिनेशन की डेट घोषणा की है। मित्रों, मैं 2-3 विषय आपके सामने, आपके माध्यम से देशवासियों के सामने, स्पेसिफिक स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों के सामने रखना चाहता हूँ। हमारी सर्वोपरि प्राथमिकता है छात्रों की भविष्य, उनकी परिश्रम के प्रति संवेदनशीलता सरकार की सदैव है। 3 मई को एग्जामिनेशन हुई, 7 मई तक एनटीए को एनटीए की ग्रीवेंस रिजिस्ट्रेशन सिस्टम पे कहीं से आपत्ति आई, गेस पेपर में ऐसे कुछ प्रश्न आए हैं जो इस बार की क्वेश्चन शीट्स में था। तुरंत ही हम लोगों की वहाँ चर्चा हुई, एनटीए ने और सरकार ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तुरंत उसको प्रारंभिक थोड़ा इंक्वायरी किया, एजेंसियों को दे दिया, भारत सरकार की एजेंसियों को दे दिया। भारत सरकार एजेंसी संबंधित 2-3 राज्यों के साथ जुड़ा हुआ विषय था प्रथम दृष्टिया में, राज्यों की एजेंसियों से संपर्क किया और 12 तारीख तक, यानी 8 को सुबह प्रक्रिया एक प्रकार से 7 रात को शुरू हुई, 8 को ही शुरू हुई, 8, 9, 10, 11 3-4 दिन में जब हमको स्पष्टता हुई, हम कन्फर्म हुए हैं कि इस बार गैस पेपर की आड़ पे क्वेश्चंस बाहर गया है, हम 12 तारीख को छात्रों के हितों में, हम नहीं चाहते थे कोई गलत कैंडिडेट एजुकेशन माफियाओं के षड्यंत्र से कोई भी सही छात्र की अधिकार वंचित हो जाए, इसीलिए हम बड़ी जिम्मेवारी के साथ, हमने कहा था हम जीरो टॉलरेंस की अप्रोच में चलते हैं। हमने पिछले बार जो विसंगति आई उसमें जो हमने राधाकृष्णन कमेटी गठन हुई थी, पिछले 25 और 26 दोनों साल हमने राधाकृष्णन कमेटी को शब्दशः इम्प्लीमेंट किया, उसके बावजूद भी ये दुर्घटना हुई। इसलिए हमने पहला हमारे निर्णय हुआ कि हम परीक्षा को इस बार रद्द करते हैं। हमने 12 तारीख को परीक्षा को रद्द किया। स्वाभाविक देश में और विशेष करके स्टूडेंट्स में उसको लेके 2 प्रकार के मत आए, हम दोनों प्रकार के मतों को स्वीकार करते हैं, हम अपना दायित्व उसको मानते हैं, उसको कैसे समाधान की रास्ता निकाले। और आज हमने आज नई तिथि के साथ आ रहे हैं, लगभग आज

0: एक महीने से थोड़ा एक दो दिन के बाद नई परीक्षा होगी। हमारी अप्रोच वही रहेगा, हम जीरो टॉलरेंस टू माल प्रैक्टिसेस। ये एक लंबी लड़ाई है परीक्षा माफियाओं के साथ साथ, जो एंटी सोशल एलिमेंट अभी मित्रों टेक्नोलॉजी के समय में एक नई चुनौती बढ़ रहा है। विभिन्न प्रकार की सोशल मीडिया हैंडल से भ्रमात्मक तथ्यों को
1: टुगेदर वी कैन।
2: All right, first the big breaking news that we're bringing you. The Madhya Pradesh High Court has given its verdict in the Bhojshala case. This pertains to a disputed monument in the Dhar district of Madhya Pradesh, and a big win for the Hindu side now, with the court declaring that the disputed area is a temple. It was a monument site where both Muslims and Hindus used to offer prayers. It has been the point of a dispute for decades now, and now this big ruling by the Madhya Pradesh High Court saying that they are now free to put a Saraswati idol too in the temple. Let's listen into what the lawyer said.

0: भोशाला के केस में, आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है, मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे, और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है।
1: All right, so there you saw the first reaction coming on that verdict that has come from the High Court, and celebrations really with the Hindu side's big win, and how the now an idol will can be placed in this at this earlier disputed area, which is referred to as the Bhoj Shala. And this dispute, as we said, is decades old. This monument, in fact, is under the Archaeological Survey of India. It is a protected monument in the Dhar district, which the Hindu community considers a temple of goddess Saraswati. The Muslim side would call the monument Kamal Maula Mosque and offer prayers on Friday. And for a very long time, both sides were allowed to offer prayers on particular days. The petitioner is from the Jain community, who had claimed that this complex is a medieval Jain temple and Gurukul. And now the High Court ruling in favor of the Hindu side, saying it will be treated as a temple and the Muslim side will be provided land for a mosque elsewhere, though they are free to approach the higher court. And there is news that the Muslim side plans to go to the Supreme Court. Now, this issue has been on for decades, as we said, and the All right, let's just listen in once again to what Vishnu Shankar Jain, the advocate in the case, had to say.
0: भोशाला के केस में, आज भोशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाईकोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक

0: all of that aspect. But let's get in Rahul Ishwar, someone who's a very prominent activist with regard to Hindu temples across India. He joins us for his first reaction to this extremely important judgment that has come in today by the High Court. Rahul Ishwar, your first reaction. The High Court has said that the Bhojshala, the 11th century temple, is indeed a temple and has gone with the Hindu side's arguments.
1: Two submissions. First of all, it's a matter of indisputable fact that many temples were destroyed, especially during the foreign invasion. And people like Will Duren went on saying it is the bloodiest story in the entire human history. So it has happened, that's a fact. Second, we need to find a balance and consensus. And from Hindu community itself, this has been the line of Sadhguru Jaggi Vasudev or Shri Shri Ravishankar Ji, who always advocated some kind of a reconciliation with our Muslim brothers and Muslim community, where we can talk out issues. If there can be a consensus, there can be a reconciliation. 1991, it was, I think, the Narasimha Rao government who brought the Places of Worship Act, which in effect, built some kind of a security mechanism for our Muslim community brothers so that they are most from the law. It's a very touchy and sensitive issue. So I think reconciliation is the way ahead. Talking to each other is the way ahead. And there are some spots which are very important. Regarding those spaces, we can talk. And even RSS Sarsanchalak Pujaniya Mohan Bhagavati categorically went on to say that we need not dig for beneath every mosque. So it's a very sensitive and touchy issue. Seniors of Hindu community and Muslim community should come together and talk to each other and try for some kind of a settlement in these issues. Because this is a very touchy and emotional issue, and we should not allow this to flare up. At the same point of time, the believers and believer sentiments and the devotee sentiments should be respected. For example, this Bhojshala is one of the oldest Vagdevada temple or the Saraswati temple, and Vagdevada is one of the ancient most concepts of our Indian civilization. So that sentiment needs to be respected too.
0: Indeed, at no point of time, we are not hinting at anything other than what you said, Rahul Ishwar. That's a very important point you're making, that at some point of time, we need to move forward collectively as a country. But with regard to this specific story, the specific verdict and the significance of this, just to tell our viewers that this verdict now has two very direct, immediate implications. One, of course, is the legal aspect to it, given the fact that Muslim side has said that they're going to challenge it. Second, of course, is it's at some point of time, I'm not a legal expert, but at some point of time, it will have a legal bearing on some of the other important cases, whether it's Gyanvapi or whether it's several others. Be that as it may, Rahul Ishwar, the fact that the uneasy equation with regard to prayers that were being held on Tuesday by the Hindus and on Friday by the Muslims was something that was challenged. And where do you see this verdict going now? It's going to go all the way to the Supreme Court. But how do you see this playing out from here on?
1: Yeah. First point, I would urge our Muslim brothers to respect and accept the Pradesh High Court verdict. They may challenge it. Of course, there is legally a right to challenge it. But let us not fall for any conspiracy theories. Let us not attribute any motives to courts, because courts are the arbiters of justice in our nation. So they should be respecting, and we all should be respecting, the sentiments and the verdict of the court. That's one thing that they should definitely do. And they can definitely challenge it in Supreme Court, where a higher bench will be taking cognizance of it. And I would also urge our own brothers not to be doing it just something kind of a jubilant mode, but rather, it's a solemn occasion, it's a spiritual occasion. Vagdevada is one of the oldest deities we have, and we have to respect it. And we have to maintain peace and reconciliation. See, peace and reconciliation is the way ahead. There is no other way. The sentiments of the devotees regarding temples are very legitimate, and they need to be respected. At the same point of time, it should not create a panic among our minority community brothers too. This balance has to be maintained.
0: Okay, all right. Rahul Ishwar joining us on the phone line. Let's also get in Vinod Bansal, representing the VHP, with us on the broadcast for his first reaction to the big story breaking in right now. Madhya Pradesh High Court has declared that the Bhojshala is in fact a temple and not a mosque, as was being challenged by the Muslim side. It has also quashed the 2003 ASI order that had allowed dual set of prayers to take place. Vinod Bansal ji, your first reaction to the Madhya Pradesh High Court decision.
2: सबसे पहले मेरे न्याय व्यवस्था को मैं आदरपूर्वक सम्मान करते हुए उनका स्वागत करता हूँ इस निर्णय का, और साथ साथ उन जुडिशरी से जुड़े हुए और वकील और बाकी जो संघर्षशील व्यक्तियों को नमन करता हूँ, जिनके अथक प्रयास से सच्चाई बाहर आई है और अन्याय की को हरा करके न्याय की जीत हुई है। ये बेसिकली जीत कोई हिंदू मुसलमान की नहीं है, कोई किसी मुसलमान की हार हिंदू की जीत मैं नहीं मानता। ये सच्चाई की जीत है, देश की न्याय व्यवस्था की जीत है, देश के संविधान की जीत है और देश की संस्कृति की जीत है। आप देखिए, ये मंदिर का सिर्फ मुक्ति का विषय नहीं था, इसमें देश की संस्कृत और संस्कृति की मुक्ति का विषय है। जितना बड़ा केंद्र हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र था, उस आध्यात्मिक केंद्र को जिस तरह से आक्रांताओं ने आक्रांतित करके अपने कब्जे में लेने की कोशिश की थी, वो मानसिकता आज भी जिंदा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उस मानसिकता के गाल पर भी करारा तमाचा लगा है जो कट्टरपंथियों के साथ खड़ी हुई भारत की संस्कृति के विरुद्ध एक मुंबई खड़ी है। आज ये विजय जो है वो सभी भारतवासियों की है, जो कि जिस तरह से अयोध्या में बाबरवादी बाबर गया बाबरी गई और बाबरवादी मानसिकता का अंत उस निर्णय से हुआ, ये ऐसा ही आज हमने यहाँ देखा। हम ये देख रहे हैं कि आखिरकार जिस तरह से माँ भारती के पायस लैंड पर, माँ सरस्वती की उस पवित्र भूमि पर जिस तरह से लगातार नमाज पढ़ करके और हमें मंदिर में पूजा करने से रोका जा रहा था, वो उस पर विराम लगेगा। और अब जो है हिंदू समाज स्वतंत्रता के साथ में अपनी सबका आदर करते हुए पूजा करेंगे, अगर कोई इसका वो नहीं है कभी। जी
0: विनोद बंसल जी, लेकिन लेकिन एक जो बहुत इससे बड़ी बात जो निकल के आती है वो ये कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात होती है और ये कहा जाता है दैट यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू हैव अ कट ऑफ डेट, वी नीड टू फ्रीज एज टू हाउ मेनी स्पेसिफिक रिलीजियस स्ट्रक्चर्स आर वी गोइंग टू इवेल्युएट टू इंश्योर दैट द हार्मनी ऑफ दिस कंट्री, द रिलीजियस हार्मनी ऑफ दिस कंट्री इज मेंटेन्ड। डू यू थिंक दैट गेट्स चैलेंज्ड every time a specific case is opened? Because this is not the only one. There is a Gyanwapi case also that's very important. That is also likely to come up?
2: Definitely. But I do not agree with the point that the Places of Worship Act or such type of decision can challenge that situation. मैं कहता हूँ कि ये जो है ना उनके एक प्रभावकारी कदम जरूर है, लेकिन इससे कोई नुकसान होने वाली चीज नहीं है। ये वर्डिक्ट तो न्याय के फेवर में वर्डिक्ट है ना। जो जो विरोध करेगा वो अन्यायी व्यक्ति का व्यक्ति है, मैं कहूंगा उसको। आप देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अगर कहीं लागू होता है इस केस में, तो ये पर्टिकुलर केस भी कई बार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया। वी हैव सीन सो मेनी टाइम्स इट हैज बीन चैलेंज इन द डिफरेंट कोर्ट्स, बट द कोर्ट हैज क्लियरली सेड दैट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 डू नॉट कम इनटू द पिक्चर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन और द लीगल प्रोसीडिंग ऑफ द कोर्ट। तो आप देखिए कि वो कहाँ एप्लीकेबल होता है, कहाँ नहीं होता है, तो कोर्ट ने डिसाइड करना है। नन ऑफ मी और यू और समबडी एल्स इज इन पिक्चर। तो जहां तक इसका सवाल है कि भाई और कितने स्ट्रक्चर आएंगे, तो डेफिनेटली देखिए भारत सच्चाई का पुजारी रहा है, सत्य के अन्वेषण में जीवन लगा देता है
0: जी।
2: तो सच्चाई की खोज होती रहेगी और सच्चाई जब बाहर आएगी तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा सबको, मुझे भी, आपको भी, हिंदू को भी, मुसलमान को भी, देश के और दुनिया के किसी व्यक्ति को
0: of course,
2: भी। मैं साधुवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं।
0: ऑलराइट, विनोद बंसल रिप्रेजेंटिंग द वीएचपी विद अस ऑन द फोन लाइन, हिज फर्स्ट रिएक्शन टू द फैक्ट दैट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ द हिंदू साइड। द भोजशाला, an 11th century temple dedicated to goddess Saraswati, has been declared a Hindu site where no prayers can be offered by the Muslim side. That is likely to be challenged by the Muslim side and the matter will go once again to the Supreme Court. Let me get in Kargi back on the broadcast to take this forward.
3: All right, thanks so much for that, Gauri. And so many reactions coming to this big, big verdict. And we'll continue to track all those developments through the day of the Madhya Pradesh High Court delivering this verdict, declaring that the Bhojshala site, a contested site for decades, for years, is now a temple and that Saraswati idol can be brought there. The Muslim side will now be approaching the Supreme Court over this. With that, we'll slip into a short break. More news and updates coming up on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये ही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.

0: common man, and we are reporting from one of the petrol pump at this point of time. We are going to talk to some of the people to just take their reaction. तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जैसे बढ़े हैं तो क्या लगता है कि और भी चैलेंजेस आने वाले हैं?
1: सर लग तो ऐसे ही रहा, भी और बढ़ेंगे और इससे तो फिर सारी चीज़ महंगी हो ही जाएगी जी। अब और जो हालात है उससे लग रहा है भी हाँ बढ़ेंगे।
2: वॉर चल रही है, जैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइस महंगे हो रहे हैं तो बढ़ने तो लाजमी है, और उसके बढ़ेंगे तो जो अपना डेली यूज की चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती है उनके भी बढ़ेंगे।
3: अभी तो तीन बढ़े हैं शायद, आई थिंक ना आज, तो मेरे को लगता है कि शायद 15-20 तो बढ़ेंगे शायद, धीरे धीरे 25 तक जाएगा लग रहा है, मे बी, आई एम नॉट श्योर।
4: Prices in Telangana has also affecting common citizen and common commuter daily who is heading to their offices and their duties. In Hyderabad, if we talk about today's fuel price, is 110 rupees 88 paisa per liter, and you can see behind me how people are in large number, they are coming to the petrol bunks and they are getting their vehicles filled with petrol. Largely the petrol prices are higher in Hyderabad, in Telangana, as well as in Andhra Pradesh, Vijayawada, because of excess VAT collection by the state government.
5: जो भी चल रहा है हमारे गुजारे से हम लोग चल रहे हैं, बस उतना ही। प्राइस बढ़ा दिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो भी यूज़ करना है यूज़ करना ही है, बिना यूज़ के तो कुछ नहीं होगा।
6: डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट ना, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, व्हाट वी गेट इज लिमिटेड, बट इन्फ्लेशन गोस अप, रेट्स गो अप, इट डेफिनेटली अफेक्ट्स आवर total lifestyle budget.
7: Prices across India have gone up sharply, with petrol and diesel prices rising up to rupees 3 per liter, adding additional burden on transport sectors as well as commuters. At present we are here at a petrol pump, and like you see behind me, people are coming and filling up petrol. Sir, aap se janenge petrol aur diesel ke prices badh gaye hain,
8: के बारे में क्या बताएंगे कि ये लोगों को जो गवर्नमेंट चलाने ही नहीं आते, खाली खाली रेट बढ़ाने का बस उतना ही काम है, हर चीज़ का उन लोगों ने रेट बढ़ाया है।
9: अभी क्या बोलने का, मोदी कर रहा है बर्बाद कर रहा, चलो अभी हाँ। जान तो बर्बाद कर रही है, आ जाओ तो
10: अभी आगे चल के क्या होने वाला है पता नहीं चल रहा अभी ये पोजिशन के हिसाब से पेट्रोल अभी भरा के रख रहा हूँ।
9: बढ़ने तो अभी क्या, पेट्रोल तो भरना पड़ेगा, हम लोग को तो लगता ही है डेली का, ऐसा कुछ ऐसा ही इसमें नहीं, और बढ़ेगा दाम तो हम लोग को तो करना ही है।
11: सरकार बोलती है कि डीजल कम यूज करें, पर जहां लगना है वहां तो लगना है ना, हमारे पास में डीजल गाड़ियां है तो हम क्या करेंगे, इसको बेच के क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी लेंगे, और टैक्सी में कहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी।
12: साइकिल चलानी पड़ेगी भाई, अभी पैदल चलना पड़ेगा, क्या करेंगे, इतनी महंगाई में हालत खराब है, आदमी को एक बार खाने को नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से चलाएगा।
13: पेट्रोल डीजल अपना दैनंदिन जीवन का आधार है, उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है, तो सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये रेट नीचे कर किया जाए, थोड़ा बिलो किया जाए कि आम आदमी को राहत मिल सके, इसके कारण बाकी सभी चीजें महंगी होंगी।
14: मैं चाहूंगा कि इससे और आगे ना हो, इतना पब्लिक के लिए सही है, इतना सह सकती है, इसके आगे और नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें महंगी हुई तो ये भी 2-4 रुपये महंगा तो समझ में आ रहा चलता है।
15: Nothing we can do or say about it. Live with it.
16: So you say there's no option but you just live with it.
15: Yes, just live with it.
16: All right.
15: No point saying anything.
16: But do you wish and hope that it does not hike more in the future?
15: I think the government should realize that they can't keep hiking everything up, because with the hike in petrol prices, everything else is also going to go up. So the middle class or the people are going to suffer.
7: Middle class will suffer. Now a fresh political showdown has also erupted over this latest fuel price hike. The opposition has launched a sharp attack against the center. Congress leader Rahul Gandhi slammed the government for fuel price hike and said that people are paying the price for the government's mistake. Other opposition leaders too are questioning the timing of the hike, alleging that the government deliberately waited for election results before increasing petrol and diesel prices. Meanwhile, the BJP has hit back at the opposition and have called them opportunists. BJP said that the rise is due to the global oil crisis, due to the West Asia conflict, and the hike in India is very minimal compared to other countries.
17: We are discussing the impact of the increase in the petroleum products, price of the petroleum products are discussing, and we are assessing the impact on the public. Then we will check. Then we will take a decision.
18: What's on that. Mr. Modi has failed in the international relationship. He could not manage well, he could not help. That is why, like COVID, what he said, ring the bell, lift the dam, lift the lamp and all is just giving. It is not possible.

0: Well, how to consume oil in my house? How can I stop it? How can I stop vehicle? You ask all the central minister. Today he may reduce his security with 2 vehicles. Okay, fine. Let all others do in the entire country. No one should travel outside. How can it be there?
1: Mr. Modi is saying that everything is fine. Is this the Achhe Din that they promised? And why is the government not telling people the problem? The Prime Minister should come out in the open, speak to public, speak in parliament on the real situation of the crisis that we are going to face.
2: Diesel 90 par, petrol 100 par. ये जनता को लूटा गया. वजह है कि उस समय अंधभक्त पैदा नहीं हुए थे. याद है कि दिल्ली में 1998 में केवल प्याज के दाम बढ़ गए थे. सुषमा स्वराज की सरकार की सफाया हो गया था. अब अंधभक्त पैदा हो गए हैं. कल दूध के दाम बढ़े, आज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े. इसके पहले एलपीजी गैस, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का बढ़ गया था.
3: सिर्फ 2-3 रुपए पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी के कारण खाद्य पदार्थों में भी बढ़ोतरी होगी, ट्रांसपोर्टेशन में भी बढ़ोतरी होगी. मतलब अब महंगाई पूर्ण रूपेण चरम पे आ जाएगी. जनता को विदेश दौरा से रोक करके खुद प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर निकल पड़े.
4: सीधा सवाल है मोदी सरकार से. पिछले 10 सालों में, 12 सालों में जब कच्चे तेल की कीमत कम थी और कोई युद्ध नहीं चल रहा था, तो 16 बार एक्साइज टैक्स बढ़ाया गया. 65 रुपए से 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल डीजल के प्राइस चले गए. उस समय जब आपने फायदा नहीं दिया, तो अब जब कीमतें बढ़ रही हैं, तो आप लोगों के ऊपर इतना भार क्यों डाल रहे हो? क्यों उनके पेट पर लात मार रहे हो? और आम लोगों से पूछना चाहता हूं, बंगाल के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी को जिताया, उसके बाद मिला क्या? 3 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए. उस समय तो बड़े जोर जोर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी बोलते थे कि बड़े हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई कमी नहीं है, कोई दाम बढ़ेंगे नहीं. इससे पता लगता है कि इनकी दोहरी राजनीति है.
5: तो हम लोग जानते हैं वर्ल्ड सिचुएशन है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं था. दूसरा, 2014 से क्या वॉर सिचुएशन चल रहा है? 2014 कंपेयर कीजिए प्राइस को. 2014 ये भाजपा गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, आज क्या है?
6: देखिए, जाहिर सी बात है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में उत्तर प्रदेश में आई है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार लोगों के ऊपर बोझ बढ़ रहा है. और इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कदम भी नहीं उठा रही. आज की तारीख में लगातार जो है लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ता जा रहा है. लोगों को चलना, निकलना, खाना पीना हर चीज़ जो दुश्वार हो गया है. और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब तक रहेगी, महंगाई इसी तरीके से चरम सीमा पर बढ़ती रहेगी.
7: But if the government had to wait for the election results, it's been more than 10 days since the elections have passed. Please note that nobody expected this crisis to last for more than 2 months. It is because of the macroeconomic stability and the measures that the government took that the Indian common man suffered the least. In fact, experienced 0 price hike in the price of petrol and diesel. And even right now, where there is a 55% increase in Pakistan, 45% in United States of America, 52% in UAE, well, everywhere, any situation has an inflection point. And as you and I, everybody is aware that nobody knows when this crisis will end. So in such a scenario, it is but natural that the government will take contingency measures.
8: All right, and amid this global energy crisis, Prime Minister Narendra Modi is on a 5-nation tour. He made his first stop in United Arab Emirates, where he met with UAE President MBZ. Upon arrival, the Prime Minister was welcomed with a ceremonial guard of honor. Interestingly, the Prime Minister's plane was escorted by F-16s as it navigated through the UAE airspace, occurring in the backdrop of the war and tensions. The meeting saw the two leaders exchange MOUs on LPG and strategic petroleum reserves. It's very important given the crisis the world is currently experiencing. Expressing solidarity with the UAE, the Prime Minister also condemned attacks on the UAE and appreciated the UAE's restraint. Remember, the UAE came under attack from Iran. Prime Minister Modi further emphasized on dialogue and diplomacy as a means to resolve the crisis.
9: यूएई पर हुए हमलों के कारण कठोर निंदा करते हैं. यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया है ये किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। ब्रदर, इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को निरंतर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जनवरी में आपकी भारत यात्रा के दौरान हमने आपस से सहयोग को क्वालिटेटिवली अपग्रेड करने पर सहमति जताई। इतने कम समय में भी हमने सभी विषयों में उल्लेखनीय प्रगति की। दोनों टीमों के बीच भी करीबी संपर्क रहा। आज जिस तरह की परिस्थिति है इसमें भारत और यूएई की स्ट्रेटेजिक साझेदारी इसका महत्व कई गुना बढ़ गया। हम आने वाले समय में हर क्षेत्र में साथ मिलकर के आगे बढ़ते रहेंगे। कठिन समय यूएई में रहने वाले भारतीय समुदाय की चिंता करने और उनकी देखभाल किए जिस प्रकार से आपने उनको अपने परिवार के सदस्य रूप में संभाला है, मैं यूएई सरकार का, आपका, रॉयल फैमिली का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
8: All right, with that, time for us to slip into a short break. On the other side, the latest in the NEET paper leak case. Stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: Thanks very much. We'll be tracking the story very closely with you. Well, let's tell you more about Prime Minister Modi's directives. Days after Prime Minister Modi called to reduce petrol and diesel consumption and further use public transport, the centre has today hiked petrol and diesel prices by rupees 3 per litre. Now, remember, the price hike comes amid mounting losses being faced by oil marketing companies in the wake of global energy supply shocks, disruptions, all this owing to tensions in West Asia. And that's due to the ongoing conflict. There has been perhaps a sharp increase in crude oil prices. We are showing you the numbers of where the diesel prices in various cities here in India, which has perhaps been hiked by rupees 3 per litre. However, that also varies state-wise, perhaps city-wise. Now, like we told you, there's been a sharp surge in crude oil prices from $70 per barrel before the conflict. The prices now surged to $120 per barrel. So this is perhaps a significant raising India's import bills as well. I'll take a listen to all the reaction that have been coming in on this.
1: Delhi residents have woken up to the price rise of fuel today. We are showing you the visuals from Pragati Maidan petrol station, which is considered to be one of the busiest petrol stations in Delhi. We are showing you the visuals of the current petrol prices in the capital that have gone up by rupees 3.14 per litre and are now selling at rupees 97.77 per litre. Diesel has become costlier by rupees 3.11 per litre, taking the price to rupees 90.67 per litre. Now, after remaining unchanged for nearly 4 years, this price rise can be seen today that has sparked concern among daily commuters, cab drivers and daily workers who are saying rising fuel costs will directly affect their monthly expenses.
2: हमें आने जाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाएगा जो ड्यूटी कर रहे हैं
3: सरकार बोलती है कि डीजल कम यूज करें पर जहां लगना है वहां तो लगना ही ना हमारे पास में डीजल गाड़ियां है तो हम क्या करेंगे इसको बेच के क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां थोड़ी लेंगे और टैक्सी में कहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी
4: साइकिल चलानी पड़ेगी भाई अभी पैदल चलना पड़ेगा क्या करेंगे इतनी महंगाई में हालत खराब है आदमी को एक बार खाने को नहीं हो रहा है गाड़ी कहाँ से चलाएगा
5: पेट्रोल डीजल अपना दैनंदिन जीवन का आधार है उसके बिना तो कोई काम होता नहीं है तो सरकार से विनती है कि जल्द से जल्द ये रेट नीचे कर किया जाए थोड़ा बिलो किया जाए कि आम आदमी को राहत मिल सके इसके कारण बाकी सभी चीजें महंगी होंगी
6: मैं चाहूंगा कि इससे और आगे ना हो इतना पब्लिक के लिए सही है इतना सह सकती है इसके आगे और नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सी चीजें महंगी हुई तो ये भी 2-4 रुपये महंगा तो समझ में आ रहा चलता है
0: All right, we have a reporter's fanned out across India to give you a pulse of what exactly is happening on the ground. I have with us Gurpreet. We also have with us Shreyasi and a few other reporters joining us from all across the India. First, I want to start with you, Gurpreet, joining me live from Chandigarh. The price hike of petrol and diesel has been there by rupees 3 per litre. You're joining me live from the petrol pump. Tell us more about how this perhaps is going to impact the consumer there.
7: Well, since morning, we have been reporting from our petrol pump and we are getting mixed response from the people. Some of the people, they are saying they are aware of such situation and they are expecting that more prices are going to be hiked. So we will also try to talk to some of the people who are present here at this petrol pump so that we will seek their response. What type of reaction do they have? And we will talk to them. तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो मंथली बजट है उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं
8: इम्पैक्ट तो देखो बिल्कुल पड़ता है किसी भी आम आदमी के लाइफ में पड़ता ही पड़ता है तो देखते हैं बट सिचुएशन ऐसी है इंटरनेशनल लेवल पे इश्यूज आ रहे हैं तो ठीक है कंट्रीज़ के मतलब पीपल को कोऑपरेट करना चाहिए देखते हैं बाकी सरकार क्या इनिशिएटिव लेती है तो जो जो टैक्सीज हैं इम्पोर्ट पे बेसिकली क्रूड ऑयल के तो उस पर देखते हैं सरकार कितना बेनिफिट देती है रेमेडी देती है
7: तो क्या आप प्रिपेयर थे पहले ही आपको लगता था कि ऐसी सिचुएशन आ सकती है क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि हमें पता ही था ये
8: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ये तो एंटिसिपेटेड था होना ही होना था बट जो पॉलिटिकल सिनेरियो आज के टाइम में चल रहा था वो सबको पता है इलेक्शंस के बाद ही होती हैं चीज़ें तो उसका रिजल्ट अब सामने है।
7: अब कार पुलिंग की भी बात की जा रही है, तो क्या आपने कोई ऐसी प्लानिंग की है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कार पुलिंग करनी चाहिए, कोई ऐसा प्लान किया है?
8: कार पुलिंग

0: that boat. Shall images of Narasimha and Bhairava was also shown. The court urged the Muslim community to approach the state government for allotment of separate land in the district for construction of a mosque. They have further said that they would approach the Supreme Court. Well, my colleague Gauri Dwivedi spoke with Vishnu Shankar Jain. Take a listen.
1: हम इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है और अभी हम हमारे पास पूरा डिटेल फैसला आया नहीं है तो वो देखने के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम इसमें आगे का कोर्स क्या लेंगे लेकिन हाँ डेफिनेटली हम इससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे। राज्य सरकार को ये निर्देश दिया है कि आप अलग से जो है एक ज़मीन दीजिए मुस्लिम पक्ष को जिसमें सारे पक्ष जितने भी मुस्लिम पक्ष थे यहाँ पे उन सबको शामिल करके और उनके हिसाब से एक जगह दी जाए जिसमें वो अपनी मस्जिद तामीर कर सके। ASI के तथ्यों को ही मानते हुए कोर्ट ने इसको फैसला दिया।
2: SI सर्वे से अवरेल जी मेरे साथ में हैं। सर, एक लंबा सर्वे किया गया और सर्वे के साथ साथ ये कहा गया था कि पहले मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि सर्वे रिपोर्ट झूठी है, एक पक्ष की रिपोर्ट है।
3: देखिए, जो हाईकोर्ट ने हमें आदेश दिए थे, ASI एक एक्सपर्ट बॉडी है, सेंट्रल बॉडी है और एक्सपर्ट्स द्वारा एक एक एक सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई थी 7 मेंबर्स की, जैसा कि कोर्ट के आदेश में था और एक लंबा चौड़ा टीम के साथ इसका सर्वे किया गया था जो लगभग 90 दिन के ऊपर चला और बिना ब्रेक के ये सर्वे चला, कंटिन्यूस चला, जिसके कोर्ट के आदेश अनुसार जो जो पहलुओं पे सर्वे करना था, स्टडी करनी थी, इन्वेस्टिगेशन करना था, वो किया गया और उसकी एक डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी। उस पर जो जो ऑब्जेक्शन लगाए गए थे अन्य पक्षों द्वारा वो हमने उसका विश्लेषण दिया गया, उसको डिफेंड किया गया कोर्ट के सामने, हमने उसे क्लैरिफाई किया था कि ये एक प्रॉपर एक्सपर्ट बॉडी द्वारा सर्वे किया गया और पूरी फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ किया गया।
2: कितने दिन का सर्वे था ये और क्या क्या तथ्य वहाँ पर सामने आए?
3: जैसा मैंने बताया 90 दिन के ऊपर का सर्वे था और इसमें पहले क्या स्ट्रक्चर था, उसके बाद उसके ऊपर क्या नया स्ट्रक्चर बना, क्या क्या ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए, वहाँ पर जो संस्कृत के परिकृत लैंग्वेज के इंस्क्रिप्शन पाए गए वो बताया, और भी अन्य लैंग्वेजों के जो इंस्क्रिप्शन पाए गए वो भी बताया गया, किन पुरानी चीज़ों को रीयूज़ किया गया हमने वो भी बताया गया। तो इस तरह से हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी जिसमें उनके प्लेयर, प्लास्टर्स, फ्लोर, स्लैब्स कुल की सारी स्टडी हमने रिपोर्ट में रखी।
2: कितने पेज की रिपोर्ट थी
3: ये? 10 वॉल्यूम्स की रिपोर्ट थी, दो हज़ार के ऊपर कितने
2: इसमें जो पुरातत्व विभाग के जो विश्लेषण थे वो कितने अधिकारी मौजूद थे?
3: सात अधिकारियों की एक एक्सपर्ट कमेटी थी, सीनियर 7 ऑफिसर्स थे और उसके अलावा अन्य एक्सपर्ट्स भी थे उस कमेटी में।
4: तस्वीरों में देख सकते हैं आप, धार में होली हो रही है और एक दूसरे पे गुलाल लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं आज, और बसंत पंचमी मानो आज मन रही। क्या बसंत पंचमी आज है?
5: आज हमारे हिसाब से तो बसंत पंचमी से भी बड़ा पर्व है। आज माँ वाग देवी सरस्वती के मंदिर को जो मुक्ति मिली है उससे पूरा धार तैयार, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भारत बहुत खुशी की लहर है, पूरे देश में खुशी की लहर है।
4: होली है क्या?
6: होली है, दिवाली है, सब
7: होली दिवाली सब है, सर्व हिंदू समाज।
4: ये बोल लोग हैं जो गुलाल उड़ा रहे हैं और होली खेल रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी धार की सड़कें हैं, ये वो होली के रंग में सराबोर हो गई है और नारे लग रहे हैं तमाम, देख सकते हैं आप। और ये पूरा ना सिर्फ गुलाल उड़ाया जा रहा है बल्कि तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं वो एक दूसरे पे गुलाल उड़ा रहे हैं और आज होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देख सकते हैं आमतौर पर ये रंग जो है होली पर देखने को मिलते हैं और लेकिन उसके पहले हर कोई इस पूरे रंग को जो है ना सिर्फ सराबोर है बल्कि एक दूसरे को रंगों में सराबोर किए हुए हैं और ये देख सकते हैं आज होली बन रही है।
6: होली बन रही है, जय जय सियाराम।
4: देख सकते हैं और ये होली के रंग में रंग चुके हैं पूरा धार और पूरी सड़कें आप देख सकते हैं, धार की यहाँ से लेकर वहाँ तक रंगों से सराबोर हैं। गुलाल खेला जा रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है क्योंकि धार के लिए आज एक बहुत बड़ा फैसला भूशाला को लेकर आया है। रिजवान खान के साथ अजय शर्मा, NDTV धार।
8: धार के हिंदुओं का सदियों का संघर्ष का परिणाम है जो बहुत खूबसूरत तरीके से आज जो है हमसे टकराया है। मुझे लगता है कि ये जीत कई वर्षों का इंतजार के बाद और कई लोगों ने अपनी जवानी खपाने के बाद ये पाई है और जैसा आज आदेश आया है मुझे लगता है कि ये आदेश बड़ा स्पष्ट है कि ये राजा भोज का बनाया हुआ माँ सरस्वती का मंदिर है।
9: मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है,
8: देखिए वो जाएं, उनका उनका संवैधानिक अधिकार है, पर मुझे लगता है कि आज जो आदेश आया है वो स्पष्ट रूप से बताता है और न्यायालय ने माना है, न्यायालय ने टिप्पणी करी है कि ये मस्जिद के पहले का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, तो ये स्पष्ट हो जाता है। उसके साथ ही न्यायालय ने एक सुविधा उन्हें दी है कि आप चाहें तो राज्य सरकार को एक आवेदन देकर मस्जिद के अलग से डिमांड कर सकते हैं जगह, न्यायालय अगर राज्य सरकार चाहे तो आपको दे सकती है, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि वहाँ नमाज नहीं होगी,
9: अब नमाज नहीं होगी, आज जुम्मे का भी शुक्रवार,
8: आज मुझे लगता है कि आखिरी नमाज थी।
10: भूषाला को लेकर आज एक महत्वपूर्ण फैसला आना है, उसके पहले नमाज अदा करने के लिए तमाम नमाजी पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भूषाला के अंदर के तमाम नमाजियों की जांच पड़ताल के बाद उनको अंदर दाखिल होने दिया जा रहा है, मेटल डिटेक्टर से जांच हो रही है और तमाम नमाजी जो हैं अंदर दाखिल हो रहे हैं। आज नमाज पढ़ने का दिन है, आज शुक्रवार जुमे का दिन है, उसके बाद तमाम लोग अंदर पहुँच रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। इसके बाद यदि देखा जाए तो पुलिस फोर्सेज बड़े पैमाने पर भूषाला के अंदर तैनात हैं और ये पूरा इलाका है भूषाला का जहाँ पर तीन पक्ष हैं, खास तौर पे एक मुस्लिम पक्ष है जो अपने कमाल बोला कि इधर पे मस्जिद बताता है और एक दूसरा हिंदू पक्ष है जिसका ये कहना है इधर पे माँ वाग देवी का मंदिर है ये, और तीसरा एक पक्ष है जो जैन समाज से आता है वो अपना इसको तीर्थंकर मानता है। तो इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं और आज सभी के दावों पर फैसला होगा, इंदौर की डिवीज़न बेंच ये फैसला करेगी, लेकिन उसके पहले नमाज अदा की जा रही है चूंकि नमाज का दिन है आज। कैमरा रिजवान खान के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी धार, भोशाला।
0: We'll be slipping into a very short break, but come right back. Lots more lineup for you here on Prime 5. We'll take you through key highlights of Trump's day 2 in China.

0: commuters, cab drivers and daily workers who are saying rising fuel cost will directly affect their monthly expenses.
1: नहीं अभी तो मैं जब आया तो अभी मैंने देखा कि शायद कुछ हो रहा है, फिर देखा कि अच्छा ये प्राइस बढ़ गया है, तो रात तक तो पता नहीं था, अभी अभी पता लग

0: generational changes. DK is definitely the future. Siddaramaiah ji is the tallest mass leader in Karnataka at the moment. But you must take your asset along with you. DK is an asset. He works hard for you. And you must give him assurances for the future while you make the transition at whatever time you decide. Communication must be clear because you cannot lose an asset like DK Shivkumar. I cannot stress the importance of a DK Shivkumar to a Congress party after an Ahmed Patel.
1: Thank you very much to all of you for being with me here on the debate. I'm apologizing that it was so short. I would have liked to give you all more time, but we will. I promise you this story is only just getting started. This is only part one of what we will be reporting from Bengaluru. Thank you very much to all of you. A major legal and historic verdict. The Madhya Pradesh High Court today has redrawn the Bhojshala dispute, declaring the contested medieval area complex a temple dedicated to goddess Saraswati. The High Court ruling is based on the Archaeological Survey of India's report and a review on historical literature that has reasserted the religious charter of the site as a center for Sanskrit learning and Hindu heritage while allowing the Muslim side to find an alternative site to continue worship. The High Court may have spoken, but the battle, both legal and civilizational, is far from over. Take a look at this big story.
2: The Bhojshala complex in Dhar has long stood at the fault line of faith and history.
3: ये दूसरा ऐसा final निर्णय है जो High Court से आया है. और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार चार साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था. ये एक माँ वागदेवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है.
2: हिंदूज रिगार्ड इट एज अ टेम्पल ऑफ वागदेवी गॉडेस सरस्वती लिंक्ड टू राजा भोज ऑफ द परमर डायनेस्टी. The Muslim side maintains that it was functioned for centuries as the Kamal Mola Mosque.
4: ये भोजशाला केस में जो हाई कोर्ट का फैसला आया है, इससे यकीनी तौर पर मुसलमानों को काफ़ी मायूसी हुई है, क्योंकि आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज अदा कर रहा है. बहरहाल ये हाई कोर्ट का फैसला है, अभी मुसलमानों के पास सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ है.
2: That long-running dispute has now been settled, at least for the moment, by the Madhya Pradesh High Court, which has declared the disputed area a temple and upheld the Hindu side's claim to worship.
3: आज भोजशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शियली क्वेश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है. कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का.
2: द बेंच ऑफ जस्टिसेस विजय कुमार शुक्ला एंड आलोक अवस्थी सेड द एविडेंस पॉइंटेड टू अ सेंटर ऑफ संस्कृत लर्निंग एंड अ टेंपल डेडिकेटेड टू गॉडेस सरस्वती. द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट हिंदू वर्शिप एट द साइट हैड नेवर बीन एक्सटिंग्विश्ड. In a significant direction, the court asked the state to consider allotting separate land for mosque construction, while the ASI will continue to oversee preservation and conservation of the site.
3: और जो ASI का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है. अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है.
2: Even as the ruling was welcomed by the Hindu side, the Muslim side has made clear that the matter is not over. Dhar's Qazi has said that the verdict will be reviewed and challenged in the Supreme Court.
5: अगर हमारे खिलाफ और हमारे आर्गुमेंट के खिलाफ आया है तो माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
2: The ASI's scientific survey became the backbone of the court battle. The report pointed to a massive structure predating the mosque and said the present dispute structure has been built using reused temple components. Among the reported findings were sculpture fragments of Hindu deities including Ganesh, Brahma, Narasimha and Bhairava, along with architectural elements that the ASI said appeared to belong to a temple.
6: On the basis of historical and literary documents, the court has decided that the religious character of the premise in question is that of